मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, राष्ट्रीय शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

मिट्टी की खुशबू में बसता अपना हिंदुस्तान है, वीरों के बलिदान से ऊंचा इसका मान है। गंगा जमुना की पावन धारा, हिमगिरी जिसकी शान है, सारे जग से प्यारा अपना भारत देश महान है। तिरंगे की आन रहे सदा, हर दिल में सम्मान रहे, भारत माँ के चरणों में अपना जीवन धन्य रहे। देशभक्ति की यह भावना हमारे मन में ऊर्जा और गर्व भर देती है।

अब बढ़ते हैं प्रभु भक्ति की ओर, जहां मन को शांति और आत्मा को सुकून प्राप्त होता है। राम नाम का दीप जलाओ, मन का अंधियारा दूर करो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन में सत्कार करो। संकट हरते दीन दयाला, सबके भाग्य जगाते हैं, सच्चे मन में वो भी ध्यावे, राम कृपा

अब स्मरण करते हैं श्री कृष्ण का, जिनकी मुरली की मधुर तान भक्तों के मन को आनंद से भर देती है। मुरली वाले कान्हा आए प्रेम सुधा बरसाने, राधा संग वृंदावन में मधुर रास रचाने। गीता का संदेश सुनाकर जीवन राह दिखाते हैं, भक्तों के हर संकट को कान्हा दूर भगाते हैं।

हर हर महादेव की ध्वनि से गूंजे सारा संसार, भोले बाबा के चरणों में मिलता सच्चा प्यार। नीलकंठ शिव शंभु दाता, सबका करते उद्धार, जो भी उनकी शरण में आए भर देते

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: जब भी हम उड़ान शब्द सुनते हैं, हमारे मन के आकाश में अनगिनत चित्र तैरने लगते हैं। नीले गगन में पंख फैलाए पक्षी, बादलों को चीरता विमान, या फिर सपनों की डोर थामे

0: लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज आप सुनेंगे गर्मियों में अप्रैल से जून में साग भाजी की खेती में उपयोगिता।
1: खेती की बात नख सुनना वाला सभी किसान भाई बहन नख सुनीता की घनी घनी राम राम। आज बात करांगा उन्हाड़ा में कहाँ की साग भाजी न आप ले सको। तापमान बढ़ने का साथ साथ खेत न मण गर्मी भी बढ़ी गई अन गर्मी की सब्जी न की बुआई को समय भी शुरू हो गए। कृषि वैज्ञानिक अन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का अनुसार अप्रैल से जून तक को समय उन्हाड़ा की सब्जी की खेती न कालीन उपयुक्त मानो जाए। अन यदि किसान भाई इना समय पर उन्नत किस्मों को चयन करे अन वैज्ञानिक तरीको अपनावत तो बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफो कमाई सके। उन्हाड़ा की साग भाजी न कालीन मिट्टी की तैयारी अन वावनी का समय को ध्यान धरा तो एकालीन हल्की भुरभुरी अन पानी की निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त हो। बुआई से पहले खेत का अच्छी तरह से जुताई कर लेवा अन एक सार कर लेनु चाहिए। हल्की सिंचाई करने के बाद बीज बोने से अंकुरण घणो अच्छो होएगा। माटी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि बीज न को जो प्रारंभिक वृद्धि छे वो उको जरूरी वातावरण मिली सक न वो अच्छी बढ़त न बढ़त पाई सक। अब तम कहाँ की साग भाजी ने की वावनी करी सको तो एक आम बतावा कि इना मौसम में तम प्रमुख रूप से फ्रेंच बीन सब्जी लोबिया चौड़ाई भिंडी लौकी खीरा तोरई घिया और उन्हाड़ा की मूली या ले सको। अन ये सब जो साग भाजी न छे ये गर्म जलवायु में घनी अच्छी उपज देज। AIRI न जो किस्म ने सुझाई वो काम प्रमुख किस्म ने छे फ्रेंच बीन की किस्म छे किया पूसा पार्वती कंटेंडर किस्म न उपयुक्त मानी गई क्योंकि ये किस्म न जल्दी पकने वाली हो अन बाजार में भी इनकी अच्छी कीमत मिली सके। सब्जी लोबिया में पूसा कोमल अन पूसा सुकोमल किस्म न विशेष रूप से कीट प्रतिरोधक हो और कम देखभाल में भी ये अच्छी पैदावार देज। चौड़ाई की बात करा तो चौड़ाई में पूसा किरण पूसा लाल चौड़ाई किस्मन में आयरन यानी कि लोहा और पोषण से भरपूर हो न ये उन्हाड़ा की एक बेहतरीन हरी साग वाली फसल छे। भिंडी में अगर कवा तो A4 परभणी क्रांति और अर्का अनामिका ऐसी किस्म न छे जो गर्मी में रोपण काले सर्वश्रेष्ठ मानी जाए क्योंकि ये पीली मक्खी अन कीट न का प्रति प्रतिरोधक या प्रतिरोधी हो। लौकी की बात करा तो पूसा नवीन पूसा संदेश किस्म न म लौकी का आकार और स्वाद में बेहतरीन होने से कम बाजार की जो मांग छे वो भी इन्हीं किस्म की ज्यादा छे। खीरा कलेन पूसा उदय एक अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म छे जो गर्मी में बेहतरीन उत्पादन दीज। किसान भाई बहन से यो सुझाव रहेगा कि वो हमेशा प्रामाणिक स्रोत से बीज खरीद जेका से बीज ने की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई सका। मिट्टी को परीक्षण करवाई न नज उर्वरक को संतुलित उपयोग कर वावणी का समय हल्की सिंचाई कर अन अंकुरण का बाद में आवश्यकता अनुसार पानी देता रहे। खरपतवार नियंत्रण अन जैविक कीटनाशक को प्रयोग करेगा तो यो उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार साबित होएगा। टपक सिंचाई अन स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने से पानी की बचत तो हो जैसे साथ साथ पौधा की बेहतर नमी भी मिलती रहे और उसकी बढ़वारी भी अच्छी रहे। सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र ने की मदद लई न आप स्थानीय कृषि विभाग द्वारा गर्मी की सब्जी ने से जुड़ी जो प्रशिक्षण योजना न चलाई जा रही उनका न से भी जुड़ी न यानी तकनीक की जानकारी प्राप्त करी सको। इना समय में जो उन्हाड़ा की सब्जी न की खेती न सिर्फ

0: पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण छे, बल्कि ये किसान भाई बहन का आर्थिक रूप से भी सशक्त बने रहे। अगर किसान भाई वैज्ञानिक विधि न से उन्नत किस्म न को अपने ना अगर खेती करेगा तो कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफो ले सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। आज खेती की बात नमन किसान भाई बहन से एतरोज कहनुज राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, वाचन स्वर था सुनीता पंडित का। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर भूपेंद्र का है।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र हम लेकर आएंगे सुबह 7:20 पर। इसे प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। 9 बजे आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। कलाकार होंगे मानसिंह बूंदिया और साथी। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:15 पर। आज आप सुनेंगे अभिजीत की आवाज। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत हम लेकर आएंगे। इसमें आज आप सुनेंगे गिटार वादन। कलाकार होंगे अभिषेक व्यास और साथी। इनसे सुनिएगा राग बैरागी।

सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 पर। इस कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय होगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। भोपाल केंद्र से ही दिन में 12 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। अपनी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे शाम 5 बजे से। सभा के आरंभ में सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत होगा शाम 5:45 पर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT हम आपको सुनवाएंगे शाम के ठीक 6 बजे। 6:30 का समय होगा सुगम संगीत के लिए और 6:45 पर सुनिएगा लोक संगीत। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रात 9:30 पर रिले करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत।

0: भारतम् षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन द्वे एकम् इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से चार दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेय की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की दो बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर, और सुनते भी रहिए और हमें कॉल भी कीजिए, और साथ ही सुनिए अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। जी हाँ, आज सुबह 10:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गीत। तो कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर हम आपको बता रहे हैं, कृपया हमारे नंबर नोट कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। 0731 ये STD कोड है इंदौर शहर का। तो जो श्रोता बाहर से कॉल करेंगे हमें, वो हमें 0731 STD कोड लगाकर ही कॉल करें। इस फ़ोन इन कार्यक्रम में कॉल करके आप सुनेंगे अपनी पसंद के हिंदी गाने। तो हम इंतज़ार करेंगे आपकी फ़ोन कॉल्स का, ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा और सुनिएगा अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। तो ये थी सूचना सजीव फोन इन कार्यक्रम की।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
2: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के, वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तक इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
1: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
3: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल

0: मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडोरी में जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपका पत्र। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक।

0: आपके पत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश पाठक और
1: वंदना तिवारी का नमस्कार।
0: वंदना जी, देखिए आज की सुबह बिल्कुल सुहानी है
1: जी सर,
0: और ढेर सारे हमारे श्रोतागण पत्र भी भेजे हैं, मेल भी भेजे हैं, और जो हमारे श्रोतागण मेल नहीं भेज पाए हैं अभी तक और पत्र भी नहीं भेज पाए हैं, उनको पहले आप मेल एड्रेस बता दें।
1: तो हमारा मेल एड्रेस आप नोट कीजिए, और अगर आपने हमें मेल नहीं किया है तो जल्दी से हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, हमारा मेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com। इस मेल आईडी पर आप हमें मेल करें और आपके मेल के जवाब देंगे हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक
0: जी। आज हम अपने श्रोताओं को चर्चा करने के पहले
1: जी,
0: हम जो मेल भी नहीं भेज पा रहे हैं, पत्र भी नहीं भेज पाए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके साथ आपके विचार साझा कर सकते हैं
1: जी। हाँ,
0: शुरू करने के पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज विश्व साइकिल दिवस है, हमें याद दिला रहे हैं नर्मदे हर के साथ प्रवीण श्री माली जी ये, और इन्होंने साइकिल चलाते हुए अपना फोटो भी तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि विश्व साइकिल दिवस जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था, और इस प्रस्ताव को तुर्कमेनिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य साइकिल के इसका बढ़ावा देना है और पर्यावरण और सामाजिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को फिटनेस, दैनिक यात्रा, प्रदूषण कम करने, सतत जीवन शैली के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए यह प्रोत्साहित करता है। और देखिए वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल की कीमत काफ़ी बढ़ रही है, हम आर्थिक बचत भी कर सकते हैं साइकिल चलाकर, और इसे प्रोत्साहित कराकर हम अपने भी चलाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें।
1: ठीक है सर,
0: तो इसका विशेष महत्व है, और देखिए हमारे श्रोता जो है अपना विशेष फोटो भेजे हैं हमारे पास श्रीमाली जी,
1: कितनी अच्छी बात है कि श्रोता हमारे इतने जागरूक हैं, याद रखते हैं किस दिन क्या कुछ उत्सव है और उसे मनाते भी हैं और साथ साथ हमसे शेयर भी करते हैं उस चीज को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेल किन का आया है
1: जी? हमारे पास बहुत सारे मेल भी आए हुए हैं हमारे श्रोताओं के,
0: एक एक करके पढ़ें
1: जी। ये जो हमारे श्रोता है, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से लिखने वाले ये हमारे श्रोता हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने हमें ये मेल लिखा है
0: जी।
1: और ये आपको नमस्कार करते हैं सर, और ये कह रहे हैं कि इन्हें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और 31 मई को रविवार के दिन जो कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे था, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा, और इस कार्यक्रम में इन्होंने अहिल्याबाई होलकर के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो इन्होंने सुनी और इन्हें बहुत

0: न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब तक कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो इस तरह की इनकी कई पंक्तियां हैं। और कुछ पंक्तियां जैसे, मुखलिफत से मिली शख्सियत सवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये बशीर बद्र जी का बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं और हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमने इनके पर कई कार्यक्रम भी प्रसारित किए।
1: जी सर, आपने ठीक कहा। और ये एक ऐसी क्षति है जिसे हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी उर्दू जगत को काफ़ी हानि पहुँची है। बहुत बहुत आगे किनका मेल है
1: सर? आगे ये हमारे पास एक मेल है, ये है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से ये मेल हमें मिला है। और ये श्रोता है हमारे प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा।
0: क्या लिखते हैं
1: सर? ये लिखते हैं कि इन्हें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आगे ये लिखते हैं कि दिनांक 1 जून सोमवार को जो गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ हमारे केंद्र से, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वर्ल्ड मिल्क डे और विश्व पर्यावरण दिवस पर जो जानकारी दी गई थी वो इन्हें सर बहुत अच्छी लगी है। और इसी कार्यक्रम में सर दुग्ध विक्रेता श्री सुनील जोशी जी से बातचीत भी प्रसारित की गई थी जो इन्हें अच्छी लगी। और ये जो प्रेजेंटर्स थी हमारी जोशी, प्रीति जोशी जी, उन्हें ये हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ ही आपके लिए लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे और भी प्रसारित करते रहें।
0: बिल्कुल, आपका सुझाव नोट कर लिया है, आगे हम प्रसारित करते रहते हैं और करते भी हैं। देखिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था, हमने कार्यक्रम प्रसारित किया, अपने श्रोताओं को जागरूक किया। और इस तरह के समसामयिक गतिविधियों से परिपूर्ण जानकारी जो साप्ताहिक सप्ताह भर के गतिविधियों पर केंद्रित रहता है, हम प्रसारित करते ही रहते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लावरिया भैरू अनिल यहाँ से लिख लेते हैं। अनिल बामनिया जी, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार जी लिखते हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगे लिखते हैं, एक सुझाव है, FM विविध भारती से सप्ताह में 2 बार फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसमें एक दिन श्रोताओं द्वारा फोन पर की गई बातचीत और उसके गीत को रिकॉर्ड करके इसे प्रसारित किया जाए, ये लिखा है। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि श्रोताओं पर केंद्रित अधिकांश कार्यक्रम तो हम प्रसारित कर ही रहे हैं और ढेर सारे मनभावन है, जितने भी कार्यक्रम देख लीजिए सब श्रोताओं पर ही केंद्रित है। आपका पत्र भी आप ही पर केंद्रित है। तो इसके साथ साथ हम इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों को प्रसारित करना होता है, फिर भी हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है। और आगे लिखते हैं, 2 जून को हेलो विविध भारती कार्यक्रम, जो तकनीक गड़बड़ी के कारण यह कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया, इससे हमें निराशा हुई है। हम आपका सुझाव नोट कर लिए हैं। जो हेलो विविध भारती जो कार्यक्रम है, ये तो चूंकि उसी समय प्रसारित किया जाता है, फोन कॉल्स पर आधारित, कुछ तकनीक खराबी के कारण नहीं जा पाए, इसका हमें खेद है। और आगे इन्होंने लिखे हैं, 27 मई को आपके केंद्र पर आपका जो प्रस्तुत आपका पत्र कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और व्हाट्सएप संदेश हमें प्रसारित हुआ है, चौखरा धाम कॉलोनी सनाबस्ती, कृष्णपाल सिंह चौहान, तारामती चौहान, नवोदित चौहान, वैभवपाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान, ये लिखते हैं, 1 जून गुड मॉर्निंग खंडवा में, गुड मॉर्निंग इंदौर में प्रीति जी ने माता पिता दिवस पर सुंदर धरोहर प्रकृति को बहुत खूबसूरती के साथ सजोया। इन्होंने धन्यवाद किया है और आपका धन्यवाद हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और आगे इन्होंने लिखे हैं कि 29 मई को इंदौर परिक्रमा जो है भीषण गर्मी के साथ इंदौर और इंदौर के आसपास की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया, वास्तव में बहुत मेहनत किया गया और हम तक पहुंचाया गया, इसके लिए धन्यवाद दिए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखा है, सुनहरे पल में सुहावने गीतों का चयन काफ़ी काबिले तारीफ है। और 31 मई को मोकाम सिंह चौहान जी द्वारा स्वर में संतुष्टि की चाह, आज का चिंतन बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखते हैं, आज का योग निरोग कार्यक्रम सुनीता जोशी जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया ये भी काफ़ी अच्छा लगा। और

0: चलने को कसरतों की रानी कहा गया है। ध्यान अशांति का सबसे बड़ा हथियार है। योग करें, स्वस्थ और प्रसन्न रखें। ये इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचारों के साथ इन्होंने अपनी लेखनी को विराम दी है। वास्तव में योग का जो है जीवन में काफ़ी महत्व है। ये योग करें और रोग भगाएं।
1: बिल्कुल सर, योग करने से हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं और हम स्वयं भी योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल
1: सर, ये हमारे पास एक मेल आया है, ये है धर्मपुरी से। और ये लिखने वाले श्रोता हैं जिन्होंने मेल लिखा है, ये हैं शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। इन्होंने ये मेल हमें लिखा है और ये लिखते हैं सर आगे कि 28 मई 2026 को आकाशवाणी इंदौर से प्रातःकालीन बेला में प्रसारित प्रोग्राम सुनहरे पल सुना। प्रोग्राम बहुत ही दिलकश और उम्दा होने के साथ प्रासंगिक भी था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्योंकि सर इस प्रोग्राम में आगे लिखते हैं कि इस प्रोग्राम में ईद उल अजहा के मौके पर प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी ने ईद से मुतालिक जानकारी और गीतों से इस त्यौहार की खुशियों में और इजाफा कर दिया। आगे सर आगे इन्होंने लिखा है कि हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी पद्मश्री जी ने अपनी बहुत ही प्रभावशाली, खूबसूरत और सशक्त पेशकश के जरिए इस प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया। और इस प्रस्तुति के लिए उन्होंने पद्मश्री दी को और आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद और आभार दिया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें लिखा। और हमारे पास भैरूलाल बाकतरिया धाकर जी उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, आज प्रातः वंदना कार्यक्रम में देशगान जो इसमें जो प्रस्तुत किया गया काफ़ी अच्छा लगा। हम नौजवान देश के धरती पे हैं खरे, तारों को तोड़ कर लाने के रखते हैं हौसले। इसके बाद भजन राम से बड़ा राम का नाम बहुत पसंद आया। और खेती गृहस्थी में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में जो जानकारी दी गई प्रासंगिक लगा। और हम भी एक किसान हैं, खेती करते हैं, लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैरूलाल जी, आपने हमारा कार्यक्रम सुना, खेती गृहस्थी भी कार्यक्रम सुना और भक्ति संगीत के भी कार्यक्रम सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: सर, अगला ये जो मेल है हमारे पास ये है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से। ये हमारे श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल।
0: जी क्या लिखते हैं
1: ये सर हमारे जो श्रोता हैं, ये लिखते हैं कि 22 मई को सुबह जो 7:20 पर इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा और इसके लिए सर ये धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लिखे हैं
1: सर? बस ये इन्होंने आगे हमारे जो दूसरे कार्यक्रम है उनकी तारीफ लिखी।
0: क्या लिखे हैं?
1: और सर लिखते हैं कि इसी दिन आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम इन्होंने सुना जो सुबह 10:10 से लेकर 12 बजे तक प्रसारित किया गया था, जिसमें सर आपने और साथ ही प्रमोद कुमार गुप्ता जी, साथ साथ बहन देवेंद्र कौर, मधु जी, श्री विजय राय जी, श्री संतोष जोशी जी, भाई संजीव कुमार मालवीय, सभी श्रोता साथियों की भागीदारी से ये प्रोग्राम बहुत ही सुपर एवं डुपर बना, ऐसा इन्होंने लिखा है सर। और ये लिखते हैं कि तमाम लोगों की सहभागिता से कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी की पूरी टीम को इन्होंने धन्यवाद दिया है। और सर आपको यानी इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर इन्होंने दिया है आपको। और ये लिखते हैं कि जिन्होंने श्रोताओं के लिए इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और दुर्गेश नागनपुरी जी का और सुरेश कुमार ढाकसे जी का एक अभी अभी व्हाट्सएप संदेश आया है। इन्होंने लिखे हैं, आदरणीय राजेश पाठक जी, आपका पत्र कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं मोबाइल ऐप पर, रेडियो पर आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण यहाँ पर एकदम साफ सुनाई नहीं देता है। आपकी जो शिकायत है हम तकनीकी विभाग को सूचित कर रहे हैं, आशा है कुछ दिन में बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर। जैसा अभी आपने कहा कि आपको व्हाट्सएप पर संदेश प्राप्त हुआ तो क्यों ना हम एक बार फिर से हमारे श्रोता जो अभी अभी जुड़े हमसे उन्हें हम व्हाट्सएप नंबर आपका बता दें ताकि वो आपको संदेश भेज सके।
0: 9993290063
1: जी हाँ, 9993290063 ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप उन्हें संदेश भेजें ताकि वो आपके संदेश पढ़कर उनका उत्तर दे सकें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अशोक मेहता जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप किए हैं। इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर केंद्र की स्थापना के सुनहरे 71वें वर्ष पर आयोजित रंगारंग

0: कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग जो है फेसबुक पर देखा, सुना और उत्साह और प्रसन्नता से मन आह्लादित हो गया और इस स्वर्णिम आयोजन की अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ इन्होंने प्रेषित किया है। और इन्होंने लिखा है, ऐसा लग रहा था कि एक विवाह जैसा उत्सव लग रहा था, बैंड बाजा और ब्रॉथ का माहौल इन्होंने अनुभव किया है और बिल्कुल लिखा है कि एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आकाशवाणी जो पेजबुक है, फेसबुक है, इस पर लाइव
1: स्ट्रीमिंग चल रही थी।
0: जी, लाइव स्ट्रीमिंग थी। और आगे लिखा है, युवानी कार्यक्रम मनभावन हवा महल रामचरितमानस पाठ स्पॉटलाइट मालवा निमार का सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम, नंदा जी भैरा जी कान्हा जी का भी खेती गृहस्थी कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा। और पुराने उद्घोषकों में जो है इन्होंने विजय राय, संजीव मालविया जी और स्वतंत्र कुमार ओझा जी, संतोष जोशी जी, देवेंद्र कौर मधु जी की आवाज़ों की भी काफ़ी तारीफ की और लिखा कि पूरे एक घंटा 50 मिनट जो कार्यक्रम चला, श्रोताओं को बांधे हुए रखा और आपके कुशल निर्देशन में आगे भी यह केंद्र और अधिक लोकप्रिय होगा, इसी आशा के साथ इन्होंने इतनी दूर से हमें लिखा है। आपको भी मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुद सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और अपने देश की संस्कृति जो है इसका अनुभव भी कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, हमें बहुत खुशी हो रही है कि उस दिन प्रोग्राम को इतनी दूर से भी, मतलब विदेश से भी लोगों ने देखा और सराहा और साथ साथ हम तक फीडबैक भी दिया उन्होंने अपना, ये बहुत खुशी की बात है।
0: अगला मेल।
1: जी, अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये है सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर से, ये है दशरथ सेन जिन्होंने मेल लिखा है।
0: जी, क्या लिखते हैं?
1: 22 मई को लिखा है इन्होंने कि 22 मई को हमारा विशेष दिन था, पुरानी यादें, पुराने गीत, पुराने लोग, विशेष से विशेष कार्यक्रम हमको सुनने को मिले, मालवा की सुरीली धड़कन आकाशवाणी इंदौर से। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, यही फ्रिक्वेंसी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सर, आगे लिखते हैं कि जिस वक्त मनभावन कार्यक्रम शुरू होता है उस समय फिल्म जहां आरा का ए सनम गीत की शुरुआती धुन बजती है, तो आज भी गाँव में पुराने लोग कहते हैं कि इंदौर से अब मनभावन आएगा। इसी प्रकार खेती गृहस्थी कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बैलों की घुंघरू की आवाज़ के साथ कार्यक्रम शुरू होता है जो बड़ा ही सुकून देती है वो धुन। आगे इन्होंने लिखा है कि युवानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो धुन बजती है वो भी इन्हें बहुत अच्छी लगती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी इंदौर को बहुत लोग जानते और पहचानते हैं और इन्होंने हमारे केंद्र को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जो खेती गृहस्थी कार्यक्रम है वर्तमान समय में, देखिए हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं,
1: जी,
0: खेत बचाओ अभियान उनका चल रहा है और 1 जून से 30 जून तक चलेगा और कई कार्यक्रम खेती गृहस्थी कार्यक्रम में भी हम प्रसारित करते रहते हैं और अपने किसानों को जागरूक करते रहते हैं।
1: जी,
0: बिल्कुल, आप जब भी बुआई करें तो मृदा जांच करवा कर करवाएं और हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं, कृषि अधिकारी हैं,
1: जी जी,
0: उनसे संपर्क करें और जो नवीनतम जो किस्में हैं उसका उपयोग करें और कई किस्में जो हैं कृषि विभाग में उपलब्ध है, आप जाएं, संपर्क करें, लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइट शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं सोहन जोशी जी, श्रीमती अर्चना जोशी जी, हरमिंदर चावला जी, श्रीमती बानी चावला जी, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, वैदेही जोशी जी, बेबी हंसिका जोशी जी, कुमारी अंकिता जोशी और खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी, अनूपपुर से श्रीमती जय जयंती कैबट जी, ये लिखते हैं, हम आपका कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ख़ासकर आपका पत्र कार्यक्रम भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम पूरे ग्रुप के साथ सुन रहे हैं और ये प्रसारित जो कार्यक्रम है इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने हमारे कार्यक्रमों की तारीफ किया और सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे ग्रुप सुन रहे हैं और विभिन्न केंद्र को आप इसके अलावा सुनते भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला मेल हमारे पास ये है, सोनू विश्वकर्मा जी का मेल आया है ये, और ये सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, ये दोनों ये नाम है। सर, ये ग्राम सत्याखेड़ी जिला आगर मालवा से इन्होंने पत्र ये मेल लिखा है और सर लिखते हैं कि हम आकाशवाणी इंदौर के नियमित कार्यक्रमों को सुनते हैं, हम सुबह से शाम तक सारे प्रोग्राम बड़ी तन्मयता

0: से सुनते हैं। आगे लिखते हैं कि 1 जून का गुड मॉर्निंग इंदौर इन्हें अच्छा लगा। योग निरोग हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम सुबह जल्दी उठकर योग भी करते हैं।
1: क्या बात।
0: और सर ये आगे लिखते हैं कि ये भी आकाशवाणी की देन है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आकाशवाणी से इन्होंने योग करना भी सीखा। सर आगे इन्होंने एक छोटी सी शिकायत लिखी है कि पिछले दिनों से शाम के समय और कभी कभी रात में आकाशवाणी इंदौर का मीडियम वेव का एक आधे घंटे प्रसारण बंद रहता है। तो ये लिखते हैं कि क्या कोई कुत्रटि है या क्या है, ये क्यों बंद रहता है?
1: ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप अगर सुनते होंगे। ये कहाँ से लिख रहे हैं
0: सर? ये लिखते हैं ग्राम सत्याखेड़ी जिला आगर मालवा से इन्होंने लिखा है।
1: तो रेडियो का भी प्रसारण चलता है, कभी कभी तकनीक व्यवस्था के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण या हमारे ट्रांसमीटर पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण कभी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये बराबर चलते रहता है।
0: हाँ, और इस संबंध में हमारे पास और भी श्रोताओं के मेल पत्र आते रहते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम रेगुलर सुनाई देते हैं अच्छे से।
1: और बात रही योगा की, तो योगा जो है केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक प्राचीन विज्ञान और जीवन शैली है। यह तनाव को कम करने, शारीरिक लचीलापन बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में अत्यंत प्रभावी है। और इससे जो है शारीरिक स्वास्थ्य में मजबूती आती है, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है, भावात्मक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। तो बिल्कुल योग करें और अपने भी करें और लोगों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आया है
0: जी।
1: ये लखन बैरागी, माधव बैरागी, वेदांश बैरागी, गांव लेकोड़ा आंजना उन्हेल जिला उज्जैन से लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर हमेशा सुनते रहते हैं और आपके लाइव प्रोग्राम का तो हम खास करके इंतज़ार करते हैं। आकाशवाणी इंदौर में सारी जानकारियां मिल जाती है, जैसे समाचार भी मिलता है, खेती गृहस्थी कार्यक्रम में कई तरह की जानकारियां मिलती है। जैसे देखिए वर्तमान समय में अभी सोयाबीन हमारे किसान भाई बोएंगे
0: जी जी,
1: तो पिछले दिनों भी हमने लगातार सोयाबीन पर जो है अपने किसानों को जागरूक किया। हाँ। इसके लिए हमने संपर्क किया सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से
0: जी।
1: और जून में भी हम डेली हम प्रसारण कर रहे हैं। और वर्तमान समय में देखिए अलनीनो का जो प्रभाव होता है
0: जी जी,
1: इस पर भी हमने कल ही प्रसारित किया है डॉक्टर बीयू दुपारे जी का वार्ता। तो देखिए हमारे वैज्ञानिक भी हैं, आपको जो है हमारे रेडियो के माध्यम से सशक्त करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल सर, और ऐसी जानकारियाँ सुनकर हमारे जो श्रोता हैं अगर वो इस चीज़ से जुड़े हैं तो वो और बेहतर तरीके से अपने खेती में फसल को बो सकते हैं, उन्नत तकनीक लगा सकते हैं और एक अच्छी आय भी वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस बार योग निरोग कार्यक्रम में सुनीता जोशी जी ने योग और ध्यान निद्रा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी के साथ साथ सुनीता जी को बहुत बहुत इन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है और आपका जो धन्यवाद है उन तक हम पहुंचा रहे हैं। ये लिखने वाले हैं हुकुम चंद कटारिया जी खरगोन मध्य प्रदेश से। इसके साथ लिख रहे हैं पिंटू सेन जी, हरिनिवास खेरे जी, बाबूलाल चौधरी जी, मिश्रा गोल्डन, के पी चौहान जी, दीपक सचिन कटारिया जी, कृष्ण बिराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया। ये लिखते हैं दोनों प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत इन्होंने नमस्कार और वंदन किए हैं और लिखे हैं कि 28 मई को आपका पत्र कार्यक्रम सुना और तृप्ति जी के साथ सुना, बहुत ही लाजवाब रहा। 28 मई को दिव्यधारा कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला, इसमें संस्कृत में इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत आनंद आया। 29 मई को परिक्रमा की इन्होंने तारीफ किया है और इन्होंने लिखा है कि नौतपा रोहिणी नक्षत्र में जानकारी सुनने को मिली, गंगा दशहरा के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, जगन्नाथ धाम पुरी से पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण जी की आराधना के विषय में पंडित जी से जो जानकारी मिली बहुत आनंद आया, राजा भोज की नगरी धार में जो दीपेंद्र शर्मा जी से हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के विषय में जो जानकारी दी गई आपके केंद्र से काफ़ी अच्छा लगा, और देवी अहिल्या जी 301 जयंती पर इंदौर और महेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी सुनने की मिली, ये भी काफ़ी अच्छा लगा। मुकाम सिंह जी को इन्होंने बधाइयाँ प्रेषित की है और सुनहरे पल में सालनी जी की जो प्रस्तुति ये भी काफ़ी अच्छा लगा। और माजिदा खान ने एक

0: एक गीत बढ़कर सुनाएं, उनका धन्यवाद जो आपका धन्यवाद है उन तक पहुंचा रहे हैं, और आरती जी की भी प्रस्तुति सुनी अच्छा लगा। सोमेन राज कपूर जी के विषय में उनकी पुण्यतिथि पर गीत सुनने को मिले, और इसके साथ ही सुमन कल्याणपुर जी को भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और इसके लिए आकाशवाणी को इन्होंने कटारिया जी ने धन्यवाद दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: जी सर, और ये एक सर मेल है हमारे पास, इस एक मेल में सर दो जगह से नाम है, एक तो इसमें नाम है नेपा नगर मध्य प्रदेश से, ये है प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। साथ ही इसमें एक नाम और है खंडवा से, ये है श्यामाबाई रायकवार, छोटू और नारायण रायकवार। ये आपको सर नमस्कार करते हैं और आगे लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित होने वाला वंदना कार्यक्रम और महिला सभा कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आता है सर। और आगे इन्होंने लिखा है कि दिनांक 26 मई 2026 यानी मंगलवार के दिन जो महिला सभा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था हमारे केंद्र से, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा, और इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत असफलता से सीख कर आगे बढ़ें, इस विषय पर दी गई जानकारी इन्हें बहुत पसंद आई। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान पर दी गई जानकारी भी इन्हें अच्छी लगी, और इन्होंने आगे लिखा है कि प्रेजेंटर नीलम चौरे जी को हार्दिक बधाई ये भेज रहे हैं, और लिखते हैं कि कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे जो श्रोता है कई कार्यक्रम सुनते ही रहते हैं
1: जी,
0: और प्रशंसा भी लिखते रहते हैं, और ख़ास करके हमने इन्हें इतने सारे कार्यक्रमों की इन्होंने तारीफ की। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से लिखने वाले हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी, ये लिखते हैं दिनांक 30 मई को आकाशवाणी इंदौर की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकासी के गायन की सुमधुर प्रस्तुति बहुत ही सुंदर लगी, मन को भा गया। आगे लिखते हैं दिनांक 31 मई को कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर डॉक्टर पीती छड़ीदार द्वारा बच्चों के साथ जो बातचीत की गई आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो है धन्यवाद हम प्रीति जी तक पहुंचा रहे हैं। और आगे लिखते हैं 1 जून को गुड मॉर्निंग इंदौर में कार्यक्रम में, इसमें प्रीति जोशी जी द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखते हैं कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी, संजीव मालविया जी, असीम कैथवास जी और आकाशवाणी इंदौर के सभी उद्घोषक भाई बहनों को उत्कृष्ट कार्य क्षमता का परिचय देते हुए कार्यक्रम की जो प्रस्तुति करते हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगता है, और शानदार प्रस्तुति के लिए इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। हम जोशी जी को बता दें, वास्तव में जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसी दिन स्मिता मुखर्जी जी को सूचना मिली आप टॉप ग्रेड हो गए,
1: अच्छा,
0: तो ये अधूरी खुशी है, और हाँ, काफ़ी अच्छी तरह से बजाई, और ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम जो होता है दिल्ली से
1: जी,
0: इसमें इन्हें बजाने का मौका मिला और पूरे देश में प्रसारित हुआ।
1: कितनी गर्व की बात है।
0: श्रोताओं को बता दें कि मार्च 2026 से जून 2026 के बीच आकाशवाणी इंदौर के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कुल 4 प्रस्तुतियां देने का सुनहरा अवसर मिला है
1: जी,
0: जिसमें करीब करीब हम 3 प्रस्तुति कर चुके हैं, एक और प्रस्तुति बाकी है, और इस कड़ी में जो प्रसारित किया गया टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकासी जी का वास्तव में काफ़ी अच्छा था, और इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री प्रमोद बोरगांवकर, और तबले पर थे श्री गांधार राजहंस। वास्तव में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, और आपने हमें प्रशंसा किया इस कार्यक्रम के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर हमारे पास एक मेल और भी है, ये मेल हमें लिखा है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से, और ये मेल लिखने वाले श्रोता हैं सूरज कुमार ढाक से, साक्षी ज्योति ऋतुराज, राजेश अचोले, पूर्णिमा पटेल और दुर्गेश नागनपुरे।
0: क्या लिखते हैं
1: सर? ये आपको नमस्कार करते हैं, और
0: आपको भी नमस्कार।
1: हाँ सर, आगे ये लिख रहे हैं कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, हमें दिनांक 2 जून 2026 का महिला सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के शानदार 90 वर्ष इस विषय पर आधारित आराधना जैन द्वारा जो जानकारी थी वो बहुत इन्हें पसंद आई। और इसी में उड़ान क्रम के अंतर्गत मेडिकल स्टोर संचालिका अपर्णा जी से आराधना जी की बातचीत उन्होंने सुनी जो इन्हें बहुत अच्छी लगी और इसके लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये श्रीमाली जी का आया है। इन्होंने लिखे हैं कि एक अपील किया है इन्होंने, सर्वप्रथम तो 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है और लिखा है, कोविड कॉल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि आपदा कैसी भी हो प्रकृति ही हमारे बचाव का एकमात्र साधन है। प्रकृति देती है हमें सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। बेहतर पर्यावरण के लिए पौधरोपण से अच्छा कोई विकल्प नहीं है और 5 जून को सभी एक पौधा जरूर लगावें। इन्होंने निवेदन किया है और आकाशवाणी परिवार भी सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि बिल्कुल जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को जो आने वाला है इस पर सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और ये पौधे लगाएं। देखिए 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी और इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। यह कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रति ऑटरीज दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमाली जी आपके इस सुंदर संदेश के लिए। आगे
1: सर, आगे हमारे पास ये एक और मेल है सुहाना चौक ग्राम रसवाड़ी से ही
0: जी।
1: इनका मेल हमें पहले भी मिल चुका है, इन्होंने फिर से एक मेल लिखा है। ये लिखते हैं सूरज कुमार ढाक से, साक्षी, ज्योति, ऋतुराज, राजेश अचोले, पूर्णिमा पटेल और दुर्गेश नागनपुरे से। इन्होंने ये लिखा है कि 1 जून सोमवार को आकाशवाणी का जो मराठी कार्यक्रम था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में शिव राज्याभिषेक दिना विशेष विषय पर लेखक, संशोधक, समाजसेवी श्री चंद्रकांत भालेराव जी से जो बातचीत इस कार्यक्रम में प्रसारित की गई थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश नागनपुरे जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप टुकड़ों में अपना जो है मेल कर रहे हैं और व्हाट्सएप संदेश भी भेज रहे हैं, एक ही बार आप भेजें ताकि दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिले।
1: सर एक और भी चीज मैंने अभी देखी है, जब मैं मेल देख रही हूँ तो 2-3 मेल ऐसे आए हैं जिसमें श्रोताओं ने फिल्मी गीतों की फरमाइश की है तो हम उनसे अनुरोध करते
0: तो
1: हैं।
0: फिल्मी गीतों का जो इसके लिए आपकी पसंद है उसमें आप भेजें, मेल करें। ये आपका पत्र कार्यक्रम है, सप्ताह भर की जो आप कार्यक्रम सुनते हैं उनकी गतिविधियों पर केंद्रित रहता है
1: जी। फिल्मी गीतों के लिए हमारे पास फोन इन प्रोग्राम आज प्रसारित होगा MH हॉटलाइन 10:05 से 11 बजे तक। आप हमें उस प्रोग्राम में कॉल करके अपनी पसंद के गीत सुने।
0: आपका रेडियो मित्र दशरथ सेन जी लिख रहे हैं मंदसौर जिले के नाटाराम से
1: जी।
0: ये लिख रहे हैं साइकिल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे घर में दादाजी के पास एक साइकिल थी, वो कहीं पर भी जाते थे, साइकिल एक जरिया था पहुंचाने के लिए और साइकिल उनकी एक पहचान बन चुकी थी। हर कोई कहता था अरे नाटाराम वाले मांगीलाल बासा है। और बताना चाहूँगा कि कैंची की धार बनवाने के लिए नाटाराम जी नाटाराम से मंदसौर जाते थे और इस तरह साइकिल की बहुत महिमा थी। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए साइकिल के हैंडल पर रेडियो हुआ करता था। क्या बात है, उस जमाने की चर्चा कर रहे हैं। इस तरह शुद्ध जीवन और था दादाजी का। तो आप इसके जरिए आपने दादाजी को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए वर्तमान में साइकिल आज भी प्रासंगिक है, हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा हृदय भी स्वस्थ रहता है, हमारा हम शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं
1: जी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और साथ ही हम पेट्रोल की भी बचत कर पाते
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: बिल्कुल।
1: और इस तरह से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और हमारे पर्यावरण को भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं।
0: हमारे बीच हिंगोली महाराष्ट्र से एक व्हाट्सएप संदेश आया है, शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़ी जी का। लिखते हैं इंदौर आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम लाजवाब लगते हैं, आपकी पसंद चॉइस टाइम, हम बड़े मेहनत से खत भेजते हैं, आपने पत्र पढ़ने में कंजूसी करते हैं, हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं। आपके देखिए, आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा, हमने पढ़ दिया, और आगे इन्होंने सभी कार्यक्रमों की तारीफ किया है। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये भगत सिंह

0: ठाकुर जी बुरहानपुर से लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता है कि अगला दृश्य क्या होगा। बहुत ही सुंदर विचारों के साथ आप हमें व्हाट्सएप किए हैं भगत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमें एक संदेश प्राप्त हुआ है शिशिर पंडित जी का, लिखते हैं कि इंसान देखकर एक पल को रुक जाए और इनसे संपर्क कर लें तो जीवन बच जाएगा। आपका एक शेयर किसी को जीवन दे सकता है, आइए इस पुनत कार्य में सहभागी बने।
1: बहुत अच्छी बात है,
0: व्हाट्सएप के जमाने में ऐसे सुंदर विचार से हमें अवगत कराए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल
1: सर, अगला ये मेल है जो अभी समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं श्रोता, ये है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना,
0: ये तो पढ़ दिया और दूसरा पढ़िए
1: सर। इन्होंने अभी जस्ट ये मेल हमें भेजा है और कह रहे हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं इस समय, हमें बहुत अच्छा लग रहा है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेल पढ़े
1: सर। इसके अलावा सर अब हमारे पास एक और मेल है
0: जी,
1: ये जो हमारे श्रोता है धर्मपुरी से, शेख फहीम मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, हसनैन और खुशी, ये कहते हैं कि इन्होंने हमारा 28 मई को इंदौर से प्रातःकालीन बेला में प्रसारित होने वाला सुनहरे पल प्रोग्राम सुना जो इन्हें बहुत अच्छा लगा था और इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है।
0: बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। हमारे पास विक्रम चौधरी जी ग्राम बगरी जिला धार से लिखते हैं, हम आपके नियमित श्रोता है, 22 मई को जो आपने कार्यक्रम प्रसारित किया स्थापना दिवस के अवसर पर
1: जी,
0: जो कार्यक्रम सवेरे 10:10 से ये चला 12 तक, बहुत ही अच्छा लगा, हमने देखा भी सुना भी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी जीत गाभनकर रही, श्रीमती सरिता गाभनकर, सिद्धांत गाभनकर, प्रिंस एकांश गाभनकर, शैलेश गाभनकर, वैशाली गाभनकर, श्वेता, सुमित गाभनकर और ध्वनि गाभनकर जी, ये लिखते हैं कि आपका जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम है काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी पसंद कार्यक्रम भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से लिखते हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार जी और झावेंद्र कुमार वर्मा जी, ये लिखते हैं कि आपका जो कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम है ये भी काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, हम आपके कई कार्यक्रम जो है न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच एक और पत्र प्राप्त हुआ है अशोक नगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से, पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके जी लिखते हैं, आपका कार्यक्रम हम न्यूज़ और एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, आपका जो चॉइस टाइम कार्यक्रम है ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। मनभावन कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए चांदूर विश्वा तालुका नांदुरा जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं नारायण भाऊ खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी जी और स्वाति प्रिया चौधरी जी, आपके कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अगला मेल
1: सर, अब हम अपने श्रोताओं को मेल आईडी हमारी बता दें एक बार और
0: जी,
1: है ना, जो हमारी मेल आईडी है ताकि श्रोता जिन्होंने हमें मेल अभी तक नहीं किया है वो हमें अगले कार्यक्रम में मेल लिख सके। हमारा मेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com।
0: एक बट पढ़ें
1: जी, AAPKAPATRAINDORE
0: जी। और हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र मीना जी नागता से व्हाट्सएप किए हैं विश्व साइकिल दिवस पर, आकाशवाणी इंदौर के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए लिखे हैं, बशीर बद्र साहब को जो आपके माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई, बहुत बहुत इन्होंने धन्यवाद दिया है, और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपसे विदा लेने की, तो अब चले, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आपका पत्र कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई

0: बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर

0: व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई
0: खरीदे। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरू के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए

0: सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। वेनेजुएला'ज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल

है उस बचपन में साइकिल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण साथी होता है। उसके साथ घूमना, उसे लेके चलना साथ साथ, जब चलना नहीं आता तो आधे पैर से साइकिल चलाना और साइकिल पर बैठ के फिर घूमना शुरू करना। तो वो जो बचपन की जो यादें होती हैं, जब हम साइकिल की बात करते हैं तो जो बचपन की यादें हैं वो सब ताज़ा हो जाती हैं। और आज का ये जो दिन है यानी विश्व साइकिल दिवस, तो आज हम आपको इसी साइकिल थीम पर ही कुछ हिंदी फिल्मी गाने सुनवाएंगे। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। और इस गाने में भी जब हम बात करते हैं इस गाने की, तो इस गाने में भी फिल्मांकन जो हुआ है वो साइकिल पर ही हुआ है। मतलब जो नायिका है और उनकी जो सहेलियां हैं वो सब साइकिल पर बैठकर अपनी पूरी टोली के साथ गाते हुए, गुनगुनाते हुए जा रही हैं। तो आइए सुने इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, ये जो शोर आपने सुना गाने के आखिर में, ये शोर कैसा था? भाई जब साइकिल चलाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब टोली में साइकिल चल रही है तो कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे, और जब इस तरह से गाते बजाते हुए जा रहे हैं तो कहाँ ध्यान रहता है कि अपनी साइकिल किसी दूसरे की साइकिल में जाके भिड़ गई। तो ये जो होता है, ये तो होता ही जब हम बहुत सारे लोग एक साथ साइकिल लेकर चलते हैं। और देखिए, अब समय काफ़ी बदल गया है, अब इतना लोग साइकिल नहीं चलाते, लेकिन जब बचपन की अगर हम बातों में जाते हैं, पुराने समय में जाते हैं लौटकर, तो

हमें याद आता है कि हम स्कूल साइकिल से जाया करते थे, जब खेलने की बात आती थी तो साइकिल लेके सारे दोस्त निकलते थे खेलने के लिए, घूमने के लिए। तो वो एक बहुत सुनहरा दौर था जब साइकिलें बच्चे चलाते थे। आज भी बच्चे साइकिल चलाते हैं, लेकिन अब साइकिल का वो दौर कुछ कम हो गया है। लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर इस बारे में सोचें तो साइकिल हम सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह सुबह घूमने के लिए साइकिल से जाया जा सकता है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही पेट्रोल को बचाने के लिए भी हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज विश्व साइकिल दिवस का ये जो दिन है 3 जून को जो मनाया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो विश्व साइकिल दिवस का जो अवसर है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में इस दिन को आधिकारिक रूप से घोषित किया था, और बाद में इसे 56 देशों का समर्थन मिला। और क्यों नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए, क्योंकि साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है, बहुत फ़ायदा पहुँचाती है हमें, और हर एक को साइकिल ज़रूर चलाना चाहिए। तो हम बातें करेंगे और भी, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं साइकिल पर ही फिल्माया गया एक और प्यारा गीत।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। जी हाँ, ये बात हम साइकिल के लिए भी कह सकते हैं कि साइकिल जैसी अनोखी चीज़ कहाँ मिलेगी। देखिए, साइकिल जब हम चलाते हैं तो ना तो धुआं का टेंशन, हमें ये अपराध बोध मन में नहीं रहता कि हमारी वजह से, हमारी गाड़ी की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। तो एक वो जो अपराध बोध है धुएँ से जो होता है गाड़ियों से, वो उससे हम बच जाते हैं। और उसके साथ ही एक जो पार्किंग की जो समस्या होती है, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, कार है या हमारे दो पहिया वाहन है, इन्हें पार्क करने में थोड़ी हमें ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन साइकिल जो है सीधी साधी सी, उसे हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं, उसको पार्क करने में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा पेट्रोल का जो खर्च है वो भी शून्य, हमें पेट्रोल डलवाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी मेहनत करना है और बस हमारी साइकिल हमें वहाँ लेकर जाएगी जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारी जेब के लिए भी अच्छा है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। साथ साथ हम व्यायाम भी कर सकते हैं, हमें कहीं जाना है तो हम अपना सफ़र भी पूरा कर रहे हैं, साथ साथ व्यायाम भी कर रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये कितनी फ़ायदे की बात है। और अगर हमारे साथ हमारे दोस्त हों तो उनके साथ हम घूम भी सकते हैं, तो है ना, साइकिल के साथ कितने सारे फ़ायदे जुड़े हुए। और श्रोताओं, पहले के समय में जब चिट्ठियों का दौर था, जब इतने मोबाइल चलन में नहीं थे, टेलीफोन इतने चलन में नहीं थे, उस दौर में जो डाकिया होता था वही चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। और डाकिया जब वो साइकिल लेकर जाता था, अपनी घंटी बजाता था, तो लोग घर से निकलते थे कि ज़रूर डाकिया आया है, पोस्टमैन आया है, और वो हो सकता है कि हमारी भी चिट्ठी लेकर आया हो। तो ऐसे ही कुछ हमारे हिंदी सिनेमा जगत में कुछ गाने हैं जो पोस्टमैन पर और साइकिल पर फिल्माए गए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो चिट्ठियों पर, पोस्टमैन पर और हमारी प्यारी साइकिल पर आधारित है।

दोस्तों साइकिल की हम बात कर रहे थे, और अगर हम ये सोचें कि भाई साइकिल तो हमने देखी है और अलग अलग प्रकार की साइकिल, जैसे बच्चों की साइकिल में साइड व्हील्स होते हैं ताकि वो गिरे नहीं, है ना, और जो बड़े होते हैं उनकी साइकिल में साइड व्हील्स नहीं होते, और आजकल तो गियर वाली साइकिल भी है जिसमें गियर देकर आप बिना पैडल चलाए साइकिल को स्पीड में आगे तक लेके जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की साइकिलें आज हम देख पाते हैं और उन्हें चला भी पाते हैं, लेकिन साइकिल का जो प्रारंभिक दौर था जब इसका निर्माण हुआ तब वो किसने किया था, अगर हम इस विषय में बात करें तो कोई एक निश्चित हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये साइकिल जो है वो अलग अलग चरणों में पूरी तरह से जो उसका आधुनिक रूप है उस रूप में पहुंची है। लेकिन सबसे पहले 1817 में जर्मन आविष्कारक थे कार्ल ड्रेसिस, उन्होंने इसे ड्रेजिन या रनिंग मशीन जिसे उस समय कहा जाता था वो उन्होंने बनाई थी, और इसे हम साइकिल का प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। लेकिन इसमें पैडल नहीं थे तो फिर इसे चलाते कैसे थे? भाई इसे चलाने के लिए जो सवार होता था वो साइकिल पर बैठकर अपने पैरों से ज़मीन पर धक्का देते हुए आगे बढ़ता था। अब आप सोचिए कि उस साइकिल को चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन हुए। 1860 के दशक में पैरी माइहॉक्स थे, उन्होंने और उनके सहयोगी ने जो साइकिल का आगे वाला पहिया था वहाँ उन्होंने पैडल लगाए आगे वाले पहिए में, और फिर आगे वाले पहिए में पैडल लगाकर उन्होंने साइकिल को एक नया रूप दिया, और इसे उस समय बहुत पसंद किया गया। लेकिन ये भी अपने आप में संपूर्ण नहीं था, बाद में इसमें फिर परिवर्तन हुए। 1885 में जॉन कैंप स्टार्ले ने सेफ्टी बाइसिकल का विकास किया, उन्होंने उसे बनाया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि लगभग दो एक समान आकार के पहिए लगाए, उसमें चेन ड्राइव लगाया, और इस कारण से उसमें एक बेहतर संतुलन सा बन पाया, और यही जो एक रूपरेखा थी ये आधुनिक साइकिल का आधार बनी, और फिर इसी आधार पर साइकिल जिस प्रकार से हम आज देख पाते हैं उस प्रकार से उसका निर्माण होता गया, और धीरे धीरे धीरे धीरे इसमें और भी चरणबद्ध तरीके से इसमें और नए नए परिवर्तन आते गए। और ये जो आज हम साइकिल की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आज की हम साइकिल देखते हैं हमें लगता है कि ये परफेक्ट है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन सोचिए जब साइकिल बनी जिसमें पहिए तक पैडल तक नहीं थे, उस दौर से लेके आज गियर वाले साइकिल तक हम पहुंच गए हैं, तो आगे आने वाले समय में न जाने कितने परिवर्तन होंगे, तब शायद कुछ और भी इसमें नया बेहतर जुड़ सके। तो इसी आशा के साथ हम एक और गाना आपको सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।

दोस्तों, आज विश्व साइकिल दिवस पर हम आपको सुनवा रहे हैं साइकिल पर फिल्माए गए कुछ हिंदी फिल्मी गाने, और साइकिल से जुड़ी ही बातें भी हम आपके साथ कर रहे हैं। अगला गीत भी हम आपको वही सुनवाएंगे जो साइकिल पर फिल्माया गया हो। लेकिन इस गीत को सुनवाने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो साइकिल है, ये एक ऐसा साधन है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के लेके जाती है। और इसका इतिहास, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इसकी जो उपयोगिता है वो कम नहीं हुई है, क्योंकि साइकिल जो है वो बढ़ते हुए प्रदूषण, ट्रैफिक और ये जो ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इनके बीच एक बहुत ही किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। ना ये धुआं छोड़ती है साइकिल, ना शोर करती है, और ना ही ये हमारी प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाती है। और आज के समय में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम ऐसे वाहनों का उपयोग करें या ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, ना कि उनके विपरीत हो, उनके प्रतिकूल ना हो। कोई भी ऐसा काम हम ना करें जो पर्यावरण के प्रतिकूल हो, क्योंकि अगर हमें एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जीना है, एक लंबा जीवन जीना है, और केवल एक हमारे अपने जीवन की ही बात नहीं है, हमारी जो संतति है, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भावी पीढ़ी हैं, उनके लिए भी हमें एक अच्छी दुनिया छोड़कर जाना है। केवल एक हमारे जीवन की बात होती तो हम चाहे जैसे जी लेते, लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ियाँ इस संसार में जिएंगी, जो हमारी संतति होगी, हम उनके लिए क्या छोड़कर जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब वो हमें याद करेंगे तो वो हमें किस रूप में याद करेंगे, ये हमारे अपने हाथ में है। तो हम पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं, पर्यावरण के लिए जो बेहतर हो हम केवल वही चीज़ें करें, वही चीज़ें चुनें, तो कितना अच्छा होगा। इसी रूप में अगर हम साइकिल की बात करें तो छोटी छोटी दूरियां जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, वहां पर हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। माना कि आज की ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जहां समय बहुत कम है, हमें बिल्कुल टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, स्कूल कॉलेज पहुंचना है, वहां हम दूरियां जहां पर ज़्यादा है वहां हम साइकिल से समय पर शायद न पहुंच पाए, लेकिन छोटी छोटी जो दूरियां हैं जो हमारे घर के नज़दीक हैं, वहां हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी बेहतर रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी, दोनों ही प्रकार से फ़ायदा है। तो हमें चाहिए कि हम छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो भी साइकिल चलाएं छोटी छोटी जगहों पर, जैसे अपनी कोचिंग है, अपने आसपास के जो दोस्तों के घर हैं, या अपनी कॉलोनी में कहीं आसपास जाना है तो वहाँ साइकिल का उपयोग करें, गाड़ी कम से कम चलाएं, तो हमारा जो पर्यावरण है वो बेहतर बनेगा और आगे आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए थे उनके नाम थे आस का पंछी, पेइंग गेस्ट, पलकों की छाव में, तेरे मेरे सपने और इशारा। इन फिल्मों के गीत आपने आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में सुने और मिली जुली आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार की। और आज का जो फिल्म संगीत आपने सुना वो था विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित और इसमें इसी थीम पर हमने आपको गीत सुनवाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा हमारे कार्यक्रम आपका पत्र में। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी वंदना तिवारी को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत और लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं मानसिंह भोंडिया और साथी।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं मालवी लोकगीत। लीजिए सुनिए मानसिंह भूंडिया और साथियों का गाया एक और मालवी लोकगीत।

इसी के साथ लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं अभिजीत।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में गाए ये गीत। लीजिए सुनिए नुसरत बद्र का लिखा हुआ ये अगला गाना, आवाज़ अभिजीत की है।

इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे अभिजीत के गाए कुछ गाने। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज के कलाकार हैं अभिषेक व्यास। इनसे सुनिए गिटार वादन। राग है बैरागी। तबला संगति उल्हास राजहंस की है।

0: इसी के साथ शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी भोपाल से।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16,68,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से
1: मीटिंग रेट 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।

एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले हम आपको बताते हैं हमारे टेलीफोन नंबर, जिन पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। तो हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710

0: दो तीन और 271024। इंदौर शहर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गाने। और देखिए हमारे पास पहला ये कॉल आ चुका है और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपका कॉल हमारे पास आया।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा पहला कॉल है।
0: अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फूल और कांटे का एक गाना है, दिल ये कहता है कानों में तेरे।
0: अच्छा, हम जरूर आपको सुनाएंगे। अच्छा बताएं कि कैसा है मौसम आपके यहाँ?
1: मौसम दो तीन दिन से तो काफी अच्छा है मौसम, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो चुकी है यहाँ पर। जी, मौसम बहुत ही खुशनुमा है।
0: जी, मौसम तो खुशनुमा यहाँ पर भी हो चुका है। कल यहाँ भी बहुत बारिश हुई और एकदम मौसम चेंज हो गया, जैसे ठंडक आ गई हो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा सूर्य प्रताप जी, बताएं आप मतलब नए गाने पसंद करते हैं या पुराने?
1: वैसे गाने तो मैं सभी तरह के सुनता हूँ, जैसे नए गाने भी सुनता हूँ। नए गानों में मुझे अरिजीत सिंह के गाने पसंद हैं, फिर कुमार सानू, और पुराने गानों की बात करें तो किशोर कुमार, मुकेश, रफी साहब, इनको तो सुनते ही रहते हैं।
0: जी, तो मतलब हर प्रकार के गाने आप सुनते हैं। और हमारे आकाशवाणी इंदौर के जो प्रोग्राम है, आप उन्हें सुनते हैं?
1: बिल्कुल, इंदौर तो मेरा फेवरेट है।
0: अच्छा, इंदौर फेवरेट है आपका? चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि इंदौर आपका फेवरेट है। तो ये गीत सुने आपकी पसंद का?
1: जी मैम।
0: जी, कॉल करने के लिए थैंक यू। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।
1: जी मैम।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है MH हॉटलाइन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है इस प्यार भरे गाने के साथ। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद लौटेंगे अपने अगले कॉलर के पास।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं?
1: मैं सपना बात कर रही हूँ, गुना से जी।
0: सपना जी बात कर रही हैं।
1: और मैम आप कैसे हैं?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, बस आपका प्रोग्राम नहीं सुन रही थी
0: चलिए, अच्छा लगा जानकर कि आप प्रोग्राम सुन रही हैं।
1: जी।
0: अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं जॉब करती हूँ महिंद्रा फाइनेंस में।
0: अच्छा जी
1: जी
0: तो अभी ऑफिस में है आपकी, घर पर?
1: नहीं नहीं ऑफिस तो मेरा 11 बजे रहता है, आपका प्रोग्राम सुनने के बाद ही जाती हूँ ज्यादातर
0: अच्छा, यानी कि काम की भागदौड़ साथ साथ रेडियो भी
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, अच्छा लगा जानकर कि आप इसे मतलब बिजी शेड्यूल में भी रेडियो को सुनना भूलती नहीं, ये अच्छी बात है।
1: जी
0: आप कुछ कहना चाह रही थी?
1: मुझे एक गाना सुनना है
0: जी,
1: मूवी का नाम है डॉग्स ऑफ फेयर और
0: जी।
1: गाने के बोल हैं दिल दी पाना ना तुम्हें कब खोती।
0: अच्छा जी, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में जो है वो वाला?
1: जी जी मैम, फीमेल वर्जन।
0: हाँ जी, हम ज़रूर सुनवाएंगे, ये गाना बहुत अच्छा है, इसका जो म्यूज़िक है बहुत
1: जी,
0: अच्छा है इस गाने का।
1: जी जी
0: तो अब
1: ये कर दीजिए मेरा सॉन्ग
0: जी,
1: प्ले कर दीजिए मेरा सॉन्ग।
0: हाँ जी बिल्कुल प्ले कर देते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस भागना है तो हम आपका समय नहीं
1: जी
0: देंगे।
1: जी
0: आप सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू, बाय
0: बाय।

0: हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: बहन जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान से जिला श्री गंगानगर तहसील अनूपगढ़ गांव खोकरा वाली से विनोद बारा सा निवेदन कर रहा हूँ।
0: विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी दूर से आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने राजस्थान से हमें कॉल किया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम मैं आपके लाइव सुन

0: रहता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम लगते हैं, आपकी मेहनत बहुत ही शानदार होती है और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम देते हैं आप।
1: थैंक यू सो मच। और आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतनी दूर से भी आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा,
0: प्रोग्राम लाइव सुनता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होते हैं आपके और इतने अच्छे प्रोग्राम देते हैं आप, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ।
1: धन्यवाद देने के लिए आपको धन्यवाद, और आप प्रोग्राम सुनते हैं इसके लिए बहुत हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा विनोद जी, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आज आप?
0: जौहर महमूद इन गोवा मूवी का गीत है, क्योंकि पिछले दिन हमारे गायिका सुमन कल्याणपुर जी हमसे बिछड़ गई थी
1: जी,
0: तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में मैं गीत सुनना चाहूंगा, अखियों का नूर है तू अखियों से दूर है तू।
1: हम जरूर आपको गाना सुनवाएंगे। और आपने ठीक कहा कि सुमन जी को याद करते हुए हमने बहुत सारे उनके गीतों को यहाँ पे अपने श्रोताओं को सुनवाया, और वो
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज थी उनकी
1: जी,
0: और बहुत सारे गीत हमें दिए हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, गीत सुनते हैं हम, और आज हमारी पसंद का ये गीत जरूर सुना दीजिए बहन जी।
1: जरूर जरूर सुनवाएंगे आपको, इतनी अच्छा आपने फरमाइश की हमसे, हम क्यों नहीं सुनवाएंगे आपको। और ये जो सुमन जी के जाने से जो एक कमी हुई है संगीत जगत को, उसको पूरा नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छी आवाज थी उनकी।
0: बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये तो आज बिल्कुल हम अब गीतों के माध्यम से सुन सकते हैं।
1: जी जी जी, तो चलिए विनोद जी आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। और
0: ओके बहन जी,
1: जी लीजिए सुनिए।

0: ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना, यूट्यूब हिंदुस्तानी कलाकार। बहुत लंबा चौड़ा पता है दीदी जान, 100 सेंटीमीटर।
1: बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बस पता दोबारा मत बताइएगा। जी इसी में आधा प्रोग्राम निकल जाएगा।
0: अरे नहीं दीदी जान, आज तो 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, कोई बात नहीं होती, बात ज्यादा हो जाए सही रहते, मायने रखती है, और गाने तो थोड़ा ही बजाइएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा।
1: जी अच्छा ये बताएं, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: अब मैं ये भी बता दूं कि काम क्या करता हूं आपने पूछा नहीं, और एक कल्पा में बहुत ही शीत लहर चल रही है, ये भी बता दूं, ठंडी का माहौल चल रहा है, और फिल्म का नाम है सौगंध। जल्दी जल्दी बात कर लूं तो ज्यादा सही। क्योंकि आप कहती हैं कि कहीं बहुत ज्यादा बात करने से दिक्कत पैदा हो जाती है श्रोताओं को, तो श्रोताओं को दिक्कत पैदा ना हो, और ये लोकेंद्र वर्मा के साथ में मैं गाना सुनूंगा, सौगंध फिल्म का गाना है, और एक लाइन गुनगुना लूं तब तो मजा आएगा।
1: अच्छा
0: नहीं वो इंतकाम का दीदी यार, मुझे भी गलत
1: है। कोई बात नहीं, इंतकाम का गाना सुनवाते हैं, बताएं कौन सा गाना?

0: बसेरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। जी वाला
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा आपने गीत गाया और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन
1: जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव से।
0: विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप विवेक जी?
1: बस ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत दिनों बाद अपनी बात हो रही है आज।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। और आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मुझे देखिए, कोमल कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं।

0: रही है
1: जी,
0: भाई को तो इनकी याद में मुझे गाना सुनना है। फिल्म में है कणकण में भगवान और गाने के बोल हैं अपने पिया की मैं तो बनी रही जोगनिया।
1: जी हम जरूर सुनवाएंगे आपको ये गाना, बहुत अच्छा गीत आपने चॉइस किया है, काफी पुराना और रेयर सॉन्ग है ये जो बहुत कम सुनने में आता है।
0: इसका जो रिदम है ना बीन के साथ आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगता सुन।
1: जी हाँ जी हाँ, ठीक कहा आपने।
0: और आज सुबह से हम आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका पत्र आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, और साथ ही फिल्म संगीत जो आपका था जिसमें साइकिल दिवस पर
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा। खासतौर पर मैं तो अपने बचपन में पहुंच गया, मेरी बहन अक्सर मुझे पीछे बिठाती थी और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब हम साइकिल से गिरते नहीं।
1: जी हाँ, जिसने भी साइकिल चलाई है वो ज़रूर गिरा है। और पता है मतलब बचपन में ऐसा हम लोग मानते थे कि अगर साइकिल से गिर गए और घुटने में चोट लग गई और खून निकला है तो उस खून को थोड़ा सा साइकिल पे लगा दिया जाए तो साइकिल जल्दी चलाना सीख जाते हैं। तो ये
0: एक हाँ जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी
1: जी
0: कि जब टेक रहती थी घर में, मुझे टिक्कू कहते हैं तो वो मुझसे बड़ी ये कहती थी टिक्कू यदि तूने घर में बताया तो कल से मैं बिठा लूंगी। और हमको बैठना रहता था है ना, तो छिपाते थे लेकिन मम्मी की नजर उस पर अक्सर पड़ जाती थी, माँ से तो चुप नहीं सकते।
1: जी जी जी ठीक बात है।
0: तो काफी डांट पड़ती थी दोनों को, लेकिन फिर वो बहन मुझे ब्लैकमेल करती थी किसी तरीके से बता के हम अगले दिन के लिए बैठने के लिए तैयार उसको कर लेते थे।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बचपन याद आया सबको अपना प्रोग्राम को सुन सुन के। एक्चुअली मैं भी अपने बचपन में पहुंच गई जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो उस समय की कुछ बातें याद आ गई, और मुझे लगता है जिन्होंने भी सुना होगा उन्हें याद आई होंगी जरूर।
0: आप मुझे ये बताएं कि आप गिरी हैं या आपने किसी को गिराया?
1: नहीं जी, हम भी बहुत गिरे हैं साइकिल चलाते हुए, गिर गिर के ही चलाना सीखा।
0: जैसे आज के आज जो स्थिति चल रही है इसके हिसाब से साइकिल बहुत आवश्यक हो गया है। स्थिति ऐसी तेज में चल रही है, और देखिए साइकिल चलाना भी चाहिए बंदना जी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल ठीक है आपने, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, और हर प्रकार से साइकिल चलाना अच्छा है। तो सभी को कुछ ना कुछ देर तक तो चलाना ही चाहिए, सुबह चलाएं शाम या कभी भी जब समय मिले थोड़ा बहुत चला लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, पर जमाना था जातियों में ऐसा साइकिल और रेडियो जरूर दिया जाता था, जिसको साइकिल और रेडियो मिली
1: जी
0: मिला वो समझते थे कि ये बड़ा अच्छे घर का मतलब है, उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन उसकी मानी जाती थी एग्जाम।
1: अच्छा ऐसा, क्या बात है, चलिए अच्छा लगा जानकर, नई चीज आपसे जानने को मिली। तो आपकी पसंद का गीत हम सुने
0: जी। धन्यवाद, नमस्कार
1: जी, नमस्कार,
0: ध्यान रखिए
1: जी, आप भी अपना ध्यान रखिए।

0: हेलो इमेज हॉटलाइन। हेलो
1: वंदना जी, आपके एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया। हम होश में आने वाले थे, फिर आपने मुस्कुरा दिया।
0: ओहो क्या बात है। कौन बोल रही है?
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: अच्छा हसीना जी बोल रही हैं। कैसी हैं हसीना जी?
1: अच्छे मैडम, आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं
1: जी। दुआ करते हैं आप लोग सभी अनावसर सलामत रहे और अच्छे रहे, हम लोगों से ऐसी बातचीत करते रहे
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के लिए। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब हमारे श्रोता भी और जो यहाँ प्रस्तुतकर्ता टीम है, सभी लोग भगवान सबको स्वस्थ रखें, सबको सुखी रखें। अच्छा हसीना जी, कौन सा आज गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: ये फिल्म का नाम मैडम अपना बना लो और गाने के बोल हैं

0: करना करना, ये सुना दीजिए।
1: आहा, क्या बात है, आप तो बहुत सुर में गाती हैं हसीना जी।
0: थोड़ा सा गा लेती हूँ ऐसी।
1: अरे थोड़ा सा क्या, इसको ज्यादा गाइए, थोड़ा सा मत गाइए, ज्यादा गाइए।
0: जी।
1: चलिए ठीक है हसीना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने गुनगुनाया वो भी बहुत अच्छा लगा।
0: जी, तो मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
1: शुक्रिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: हेलो एम ए हॉटलाइन, हेलो
1: हेलो
0: हेलो एम ए हॉटलाइन
1: जी, नमस्ते मैम
0: जी, नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद, एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ, किस शहर से बात कर रहे हैं?
1: जी श्रीनगर जिला महुआ, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा उत्तर प्रदेश, कैसा है वहाँ का मौसम अभी?
1: अभी गर्म है ज्यादा, आज का पूर्वानुमान है कि आंधी चलेगी, गरज के साथ चीटें पड़ेंगे।
0: अच्छा तो ध्यान रखिएगा आंधी का, अगर पूर्वानुमान है तो
1: जी।
0: अच्छा गाना कौन सा सुनना चाहते हैं अग्रवाल जी?
1: जानवर फिल्म का।
0: जानवर फिल्म का कौन सा गाना?
1: कसम से कसम।
0: ठीक है हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: जी मेरी आज किन मैम से बात हुई है?
0: किन से बात हुई?
1: किन मैम से बात हुई है?
0: मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं समझ पाई, क्या कहा आपने?
1: आपका नाम क्या है?
0: मैं वंदना तिवारी।
1: वंदना जी
0: ओके, आप ये पूछ रहे थे कि मेरी आज किन मैम से बात हुई है?
1: जी,
0: जी मैं वंदना तिवारी हूँ। तो अग्रवाल जी आपकी पसंद का गाना सुने
1: जी।
0: जी

0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी।
0: नंदिनी जी, कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: जी, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा बताएं, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं नंदिनी?
1: मूवी का नाम है किक।
0: ओके
1: जी, अभी लाइव नहीं है ना मैम? हम
0: आप लाइव ही हैं?
1: ओह,
0: आप रेडियो पर हैं, बताएं।
1: ओके ओके, क्योंकि ऐसा लगा मुझे।
0: नहीं, आप लाइव हैं, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। गाने के बोल बता दीजिए।
1: मूवी का नाम है किक और सॉन्ग है हैंगओवर।
0: नंदिनी जी
1: जी,
0: ये बताएं कि क्या करती हैं आप?
1: मैं, मेरी स्टडी फाइनल हो चुकी है।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जब स्टडी आपकी हो गई, तब आप क्या कर रही हैं घर में अभी?
1: अभी फिलहाल में तो मैं बैठी थी, और अभी तो बादल हो रहे हैं, बस बारिश हो
0: सकता। तो आप बारिश का इंतजार कर रही हैं?
1: हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी, और क्या, गर्मी गर्मी होती रहती
0: है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आपने बारिश का इंतज़ार तो देखिए सभी कर रहे हैं, सभी लोग गर्मी से त्रस्त हो चुके हैं, और अब सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्दी से बारिश आ जाए और सबको ठंडक मिले, है ना?
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: अच्छा ठीक है, तो नंदिनी जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, बारिश का इंतज़ार करते करते। लीजिए, सुनिए।
1: ओके मैम, नमस्ते।
0: ओके।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जीनत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम।
0: अच्छी हैं? अच्छा जी। नाम अच्छा है आपका, जीनत
1: जी।
0: अच्छा जीनत जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: हमारा एक बार एंसिनी गाना, पर्दा है पर्दा, पर्दे है पर्दा।
0: अच्छा, कव्वाली है वो
1: जी, वही जी।
0: हाँ ठीक है, हम आपको जरूर सुनवाएंगे जी।
1: आपका नाम?
0: जी मैं वंदना तिवारी
1: जी।
0: तो आप हमारे प्रोग्राम सुनती हैं रेडियो के?
1: जी, पूरे इंदौर के, पूरे आकाशवाणी के भी, और इधर विविध भारती इंदौर चलते ही रहता है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप घर के काम करते हुए पूरे समय रेडियो सुनती रहती हैं?
1: जी।
0: अच्छी बात है, काम करते हुए रेडियो सुनने का एक अलग ही आनंद है ना, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है।
1: काम भी हो जाता है और सुनते भी रहते हैं।
0: हाँ जी, और मन लगा रहता है ना
1: जी।
0: तो ठीक है जीनत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद की कव्वाली
1: जी। जी शुक्रिया
0: जी, शुक्रिया। लीजिए सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी नमस्कार। जी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सूरत गढ़ राजस्थान से कुंदन कटारिया।
0: ओहो कुंदन जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं जी। और आप सुनाइए कैसे हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताएं कैसा है आपके यहाँ मौसम राजस्थान में?
1: मौसम राजस्थान में तो फुल गर्मी होती है इस टाइम, और लगभग 48 डिग्री का तापमान हो जाता है। अभी 2-3 दिनों से कुछ अच्छा है, आंधी बारिश वगैरह कुछ ओले वगैरह आए इधर,
0: जी जी
1: उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर कम हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कुछ तो राहत मिली।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये तो प्रकृति की है, प्रकृति के साथ अपने को रहना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति से अपने दूर नहीं जा सकते।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति हमारे को रखेगी, हमको रहना पड़ेगा गर्मी में भी सर्दी में भी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी,
1: हम इंदौर में
0: जी अभी तक तो थी गर्मी, लेकिन अभी कल अच्छी खासी बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा सा बदल गया है, ठंडक सी आ गई है मौसम में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, आपके तो उधर काफी बारिश होती है। हमारे तो राजस्थान में इधर वो है ना रेत के टीले जिसको पहाड़ कहते हैं, तो वहाँ से क्या धूल भरी आंधी वगैरह सब चलती है
0: जी। लेकिन राजस्थान राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि है, उसकी अपनी एक अलग ही आन बान शान है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत के अंदर राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है
0: जी। अच्छा सुनिए कुंदन जी, कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो

0: प्यार गाना बता दें।
1: हाँ, फिल्म लावारिस का सुना दीजिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मेरे कुछ साथी भी हैं मेरे साथ सुन रहे हैं।
0: जी नाम बताएं। जी बिल्कुल,
1: नरेश वर्मा है, रोहिताश शार्वत है, विकास पारिक है, कविता जी हैं, मोनिका जी हैं, शोभा जी हैं, और भी मेरे बहुत से साथी हैं जो सुन रहे हैं मेरे साथ।
0: अच्छा अच्छा, तो आपकी पूरी मित्र मंडली इस प्रोग्राम को सुन रही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं इस गीत के लिए।
0: चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अच्छा लगा आपने हमें इतनी दूर से कॉल किया।
1: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी ठीक है, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: ओके ओके, थैंक यू
0: जी।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर हम आपको हमारे टेलीफोन नंबर बताते हैं ताकि अगली बार आप भी हमें कॉल कर सकें। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का एसटीडी कोड है 0731, तो कॉल करना न भूलिएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपकी फ़ोन कॉल्स का। इस समय अपने इस रेडियो साथी वंदना तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं, और एक ही गड्डी नहीं पड़ी जाती है, बहुत सारे। आप कभी आकाशवाणी आएंगे?
2: नहीं, हम तो होके गए ही है वहाँ पे, अभी अक्टूबर में आए थे, जैसे स्थापना दिवस पे।
1: अच्छा अच्छा,
2: आपको मालूम नहीं हो भले, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही तिलक राणा डोमन ठाकुर, ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज, वही
1: नहीं नहीं रटे नहीं है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है, तो उसका नंबर रोटेशन में आता जाता है।
2: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले हजार
1: बिल्कुल,
2: डाले
1: बिल्कुल,
2: हमारा क्या होएगा फिर?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ही बताइए, फोन करे गीत सुने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: ये दीदी आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है, जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया है,
1: जी जी,
2: तो उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत,
1: पहचान फिल्म का,
2: पहचान पिक्चर,
1: ओ परी
2: हाँ वो वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका डुएट भी है,
1: हाँ हाँ
2: पहचान पिक्चर का उन्हीं का गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए।

0: अच्छा ठीक है। और
1: पवन कल्याणपुर जी को समर्पित है ये। सेकंड
0: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
1: ये आया ना हमको प्यार जताना, ऐसा
0: अच्छा
1: गीत है।
0: ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
1: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने।
0: बिल्कुल
1: ये
0: रखेंगे।
1: लेटर के बारे में आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
0: चलिए बिल्कुल, हम बात करेंगे इस विषय पे। राजेश जी
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे। जिस
1: धन्यवाद।
0: तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक
1: हाँ
0: है, चलिए
1: ये धन्यवाद
0: नमस्कार
1: दीदी।
0: जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते
0: जी, नमस्ते। मैं अमीग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
1: छतरपुर से, सुनीता पटेल, अनीता,
0: जी, संगीता
1: संगीता।
0: जी मैम
1: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
0: जी, आप कविता मैम बोल रहे
1: हाँ
0: हैं
1: जी।
0: जी?
1: और कैसी हो संगीता?
0: जी ठीक है मैम।
1: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो?
0: आज सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का,
1: अच्छा, कौन सा वाला गीत इसका?
0: बंधन, दिलों का बंधन।
1: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये।
0: जी
1: बंधन तो
0: मैम,
1: प्यार का
0: आपके
1: बंधन
0: यहाँ
1: है।
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है ऐसा कह सकते हैं। बारिश बारिश हो
0: जी
1: जा रही है बीच बीच में, आंधी
0: मैम, यहाँ भी
1: तूफान।
0: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन बरसा है। जी
1: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा हुआ है
0: जी
1: ना।
0: दोनों साथ में एक आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता जी, कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: जी, थैंक यू मैम।
1: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिव नारायण तिवारी जी बोल रहे हैं?
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं।
0: अच्छा ऐसा है, अरे वाह क्या बात है।
1: हाँ, तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है
1: जवाब
0: आप सभी के?
1: जी।
0: हाल कैसे हैं आप सभी के? हाँ
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: है। आप सुनवाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को, आपको
0: हाँ
1: भी।
0: हाँ थैंक यू।
1: आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा ठीक है बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन
0: बहुत अच्छा गीत है तो,
1: जी।
0: और मिल भी गया है हमें तो, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: ठीक है चलिए, तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी
1: जी
0: पसंद का गीत। थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता जी आपसे बात करने को तड़प रहा था।
0: सच में?
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी। और आज मेरा ईश्वर ने सुन लिया।
0: देखिए इतना अच्छा, तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी, और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नजारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया है।
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी, बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए आप, हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फुलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल रहे हैं कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारे इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही
1: मिलेंगी।
0: बात है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल, और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए, कॉल
1: जी,
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक है
1: बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद
1: फोन
0: जी।
1: लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत कविता
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: जिला सीनी ग्राम पातरफोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे?
0: राहुल धुर्वे।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: अभी तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है सर, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम
0: हैं?
1: भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी?
1: हाँ जी,
0: अभी आप काम क्या करते हैं?
1: मैं वीडियो कॉन डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: जाने अनजाने मूवी का है। हाँ,
0: जाने अनजाने।
1: पिया पिया ओ पिया पिया।
0: एक मिनट, हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं जाने अनजाने। मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी, नहीं है यहाँ पर उसका। जाने अनजाने जरूर, उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या?
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो
0: छम
1: प्रिया
0: छम
1: प्रिया।
0: बजे रे पायलिया, उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के।
1: चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए
1: है कुछ
0: अच्छा,
1: उसमें।
0: मैं देखती हूँ। जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया। यदि
1: पिया
0: ये गीत
1: पिया ओ
0: नहीं
1: पिया
0: मिला,
1: पिया तू चांद है पूनम का,
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: इसमें आप मतलब साजन
0: इसी फिल्म
1: का
0: का,
1: घर का कर दीजिए। हाँ,
0: साजन के घर का, उसका कौन सा गीत?
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए, ठीक
1: मैम,
0: है।
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स

0: हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजे तक, जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी जी
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए, तो ये बेहतर हो पाता।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए। ठीक है राहुल जी।
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से इतिन कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी। राजू
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी। लवानिया
0: ओके, राजू लवानिया जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन आज इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है?
1: दीदी, मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है, हल्के बादल हैं, रात को बारिश हुई है, बिजली चमकी है, बिजली कड़की है, तो थोड़ा मौसम का
0: चलिए
1: जी।
0: ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
1: हम तो ठीक है दीदी, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
0: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
1: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले, और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग
0: चलिए,
1: फिट और
0: बहुत बहुत
1: फिट।
0: आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी, सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
0: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: अपने
0: धन्यवाद,
1: भावभीनी
0: आपने
1: श्रद्धांजलि
0: बहुत
1: देते
0: अच्छा
1: हुए
0: सोचा
1: उन्हें
0: है।
1: याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
1: ओके दीदी,
0: ठीक,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। हाँ,
1: गाना सुनना है मैडम? मैं
0: नाम तो बताइए।
1: अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से।
0: हसीना भी मंसूरी?
1: अमीना अमीना
0: अमीना।
1: जी मैडम, उस दिन में लगाया मैंने।
0: अच्छा, हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है।
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन में
0: चलिए,
1: लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे मेरे को ये थोड़ा सा जी अकड़ा था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी, तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो अब तो
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है अब तो।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए।
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ, चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म इज्जत गाने के बोल,
0: हाँ,
1: क्या मिलना है ऐसे लोगों से जिनकी,
0: अच्छा
1: हाँ, जिनकी फिजरत छुटी रहे। जी
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल, अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो
1: मैडम,
0: क्या
1: आपकी आवाज
0: मिलना?
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल सुन पा रही
0: हाँ,
1: हूँ।
0: सही कह रही हैं आप, आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है अमीना जी, थैंक यू, कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम, थैंक
0: नमस्ते।
1: यू मैडम,
0: ओके,
1: आपको भी नमस्ते मैडम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: मैं वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
1: हाँ अमिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
0: देखो वंदना जी, फिर आपको गलतफहमी हो गई। जी
1: फिर कविता दीदी बोल रही ना,
0: हाँ
1: देखा। आपसे ही बात हुई थी मेरी कविता दीदी।
0: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसी कंफ्यूज हुई थी।
1: हाँ, बिल्कुल देखा। उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन। अरे
0: तो आप ही बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती है थोड़ी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ
0: चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज गाना सुना दी, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
0: अच्छा,
1: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
0: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
1: गाना
0: खैर,
1: इतना
0: मिल
1: नाम तो
0: जाएगा
1: नहीं है दीदी, आज तो
0: मिल
1: दूसरा
0: जाएगा।
1: बता दूं।
0: हाँ दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा। हाँ
1: मिल जाएगा दूसरा,
0: लेकिन एक और बता दो फिर
1: फिर
0: भी।
1: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
0: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने। नहीं, सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना चाहिए।
1: अभी रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
0: हाँ तो
1: मुझे
0: आपने
1: तो
0: नोट
1: बहुत
0: कर लिया
1: पुराने
0: कि
1: पुराने गाने
0: आप
1: भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है गाना,
0: हाँ?
1: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी।
0: ओ
1: बहुत अच्छा लगता है मुझे वो रूही रू। और भी
0: हाँ,
1: पुराने पुराने गाने मैंने एक दिन वो उसका कौन है वो गायिका,
0: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया, गैरों पे करम।
1: गैर पे करम नहीं,
0: हाँ
1: तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तू औरों की क्यों हो गई।
0: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
1: ये
0: पता।
1: वो हीरो है जॉय मुखर्जी की, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
0: कोशिश करते
1: और
0: हैं।
1: अच्छा से अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ, जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ फिर समझ में नहीं आ रहा।
0: देखो
1: अमिताभ
0: वैसे तो
1: बच्चन
0: आपका
1: का
0: ये
1: सुना
0: पहले गीत
1: दीजिए
0: मिल
1: फिर
0: जाएगा,
1: आपको,
0: जहां
1: चले
0: मैं जाती
1: जाइए
0: हूँ वहीं चले
1: वहीं
0: आते हो।
1: चले आते हो, चोरी चोरी दीदी। आप
0: चलो
1: तो
0: टेंशन नहीं लो,
1: मिलना
0: मिलेगा यही गाना
1: कहाँ
0: मिलेगा।
1: है, शॉर्टिंग के प्रोग्राम।
0: अपन ढूंढ के लाएंगे।
1: आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते, कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
0: तो
1: इन्वर्टर भी
0: आप है
1: बंद
0: ना,
1: हो गया
0: न्यूज
1: था, हो गया
0: न्यूज ऑन
1: चेंज हो
0: एआईआर
1: गया।
0: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या मोबाइल पर?
1: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
0: अरे
1: बार किया नहीं होता।
0: नहीं, डाउनलोड हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
1: ठीक है, मैं आज ही
0: है
1: करवाती हूँ।
0: ना।
1: मैं करती हूँ, प्ले स्टोर में जाके भी किया पर वो
0: प्ले
1: चला
0: स्टोर
1: जाता
0: में
1: था,
0: जाके ही
1: बूट
0: करना पड़ेगा न्यूज
1: नहीं मैंने
0: ऑन
1: किया नहीं
0: एआईआर।
1: हुआ मुझे तो
0: अच्छा
1: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो लगा रहता है, पता नहीं जो
0: चलो,
1: मेरे
0: एक बार और
1: किसी।
0: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
1: जी नहीं, आप कभी कभी नमस्ते, और आप
0: नमस्ते। कोई
1: पहचानने में गलती हो गई तो सॉरी।
0: बात नहीं, कोई बात नहीं,
1: अमिता
0: ओके।
1: दीदी क्या है ना, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इसमें मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है।
0: चलो कोई बात नहीं, ओके
1: ठीक है
0: ओके,
1: दीदी,
0: थैंक
1: नमस्ते,
0: यू,
1: कल
0: बाय
1: सुनेंगे आप।
0: बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित ईकेवाईसी 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आरडी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं

0: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे
1: कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।

0: मुझसे पूछे बगैर तुम मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
1: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
0: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
1: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोलकर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहां मैं चाहूंगी।
0: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
1: तेरा निकाह रसूल से ही होगा, और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
0: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
1: अरे, तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ। जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
0: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
1: क्यों, क्या कमी है उसमें?
0: तू खूब जानती है अम्मी, उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
1: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है, और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है। मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
0: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
1: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
0: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
1: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
0: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
1: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
0: अम्मी,
1: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अरे क्या सोच रही है, खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से, ऐसे क्या देख रही है मुझे, चल।

0: अबू अबू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अबू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा, बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि एक महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
0: आती हूँ।
2: साराय साराय
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
0: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
0: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूँ। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
0: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूँ तुझे, है?

0: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
1: अरे चाय पी लो।
0: अरे कहा ना रहने दो।
1: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
0: मन नहीं है।
1: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
0: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
1: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
0: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
1: अरे तुम बेकार की बातें सोच कर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
0: अरे सारे को देखो।
1: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।
0: तुम माँ हो उसकी या?
1: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
0: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
1: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
0: फाता, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर

0: और उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है और सारे पल पल घुटती है।
1: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो। अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे, पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं।
0: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
1: अरे जाने तो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
0: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
1: हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
0: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
1: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: अब्बू।
1: कौन? सारे
0: हाँ,
1: आ गई बेटी,
0: खाना खा लो अब्बू।
1: रख दे बेटा।
0: अब्बू, एक बात पूछूं?
1: हाँ
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी,
0: आपने कुछ
1: शैतान।
0: क्यों नहीं किया अब्बू?
1: मैं मजबूर हूं बेटी, तू जा, घर जा बेटी।
0: अब्बू, अब्बू, आप रो रहे हैं। अब्बू,
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूं, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं।
0: अब्बू,
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया? इस फूल सी बच्ची

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाईजान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए अंदर आइए।
3: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। हाँ भाई। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो सन भट्ट? फातह कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: हो, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
3: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ बस वो इंतजाम में लगा हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
3: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप?
3: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
3: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
1: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ ये डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में है।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, हसन मंट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर,
1: जैसे आप बेहतर समझे।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मैं

0: मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई, अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: कौन?
3: मैं मुश्ताक।
2: मुश्ताक, मुश्ताक आप?
4: सारे तुम? अब्बू कहाँ हैं?
2: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आओ बैठो।
4: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
2: बेहतर है।
4: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
2: पूछो।
4: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
2: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक। प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
4: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ। तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
2: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक? अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
4: सारे, अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे, सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
2: पर ऐसा कौन हो सकता है?
4: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
2: क्या?
4: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
2: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
4: सारे, मैं नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो। अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
2: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
4: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
2: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
4: सारे,
2: नहीं देख सकते ना? ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
6: आ-
1: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ

तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
1: सखियों, स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए स्मृति तिवारी का नमस्कार। सखियों, हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ से प्रयास करें तो ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सखियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ईंधन की खपत कम करने के लिए कहा है। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। आसपास के कार्यों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए इसका उपयोग करने से हम ट्रैफिक जाम से आसानी से बच सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे शरीर को चुस्त रखने के लिए और मसल्स को टोन करने के लिए भी चलाया जाता है। और अगर हम रोजाना 20-30 मिनट साइकिलिंग करें तो शरीर जो है हमारा शेप में रहता है। सखियों, हम कह सकते हैं साइकिल एक साधारण सवारी नहीं बल्कि सेहत और स्फूर्ति का खजाना है और इसके उपयोग से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सेहत पर साइकिल चलाने के फायदों को ध्यान में रखकर ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए साइकिल के फायदे उजागर करना और सेहत के प्रति साइकिल चलाने के फायदों से लोगों को अवगत कराने जैसे कारणों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है और इसे चलाने के लिए पेट्रोल या CNG किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सखियों, साइकिलिंग हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे रक्त संचार अच्छा व शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। साइकिलिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सखियों, पैडल चलाने से शरीर में एंड्रोफिन निकलता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है। सखियों, आप भी साइकिलिंग करें लेकिन सुबह के समय। इस समय हीट वेव चल रही है इसलिए दोपहर और शाम के समय बिल्कुल भी साइकिल न चलाएं। सखियों, साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। जीवन के सफर में जब हम सफर साथ हो तो हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं और रास्ते यूं ही कट जाते हैं।

0: आपसे बात कर रहे थे सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तन के साथ मन भी खुश रहे। इसके लिए जरूरी होता है हम अच्छा साहित्य और किताबें पढ़ें। इससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। साथ ही अलग अलग परिस्थिति और घटनाओं को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। इन भावों में शब्दों का संयोजन करके लय के साथ हम कविता और काव्य पाठ के रूप में व्यक्त करते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं ज्योति दोहरे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। एक मुक्तक से सभी श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चूंकि मैं कर्म को विशेष महत्व देती हूँ, मैं मानती हूँ कि कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे विशेष होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। नशा मेहनत का जो करते

करते न किस्मत नाम लेते हैं। मित्रों, हर किसी के आगे हमें झुकना भी नहीं चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा। कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई को।

खुदाई को, और चार पंक्तियां और रखती हूं कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, और बनना हो जो सूत्रधार तो एक दो किताबें पढ़ने से क्या होगा, जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। बेटियां चांद तक पहुंच गई फिर भी उन्हें आज कम आंका जाता है, और एक बेटी होने के नाते देश की सभी बेटियों को एक छंद अपना घनाक्षरी, मेरा सर्वप्रिय छंद, मैं उसको सभी को भेज रही हूं, सभी का आशीष मिले। सुनिएगा कि

है नशे को बंद करने के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर एक छंद आप सभी को भेज रही हूँ, सप्रेम भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा। चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। के चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले

द्वार बंद होने चाहिए। हमारी कवियों की कलम बहुत कुछ लिखती है, लेकिन जब एक देश प्रेम की कवयित्री कुछ लिखने का प्रयास करती है तो सबसे पहले उसे सीमा पर जो सैनिक हैं उनकी माएं याद आती हैं, क्योंकि उनकी अगर माँ ना हो तो वो सीमा पर सैनिक हमारे ना खड़े हों और हमारे देश की रखवाली ना कर रहे हों। तो सैनिकों की माओं के ऊपर समर्पित मेरा एक घनाक्षरी आप सभी को भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा।

कोख से, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी। और एक छंद में और आप सभी को भेज रही हूँ, सुनिएगा।

0: भाव बिना देश का भविष्य यहाँ चुन कौन पाएगा, और कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, कि कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करती हूँ और आपको एक गजल के एक मतले और एक शेर से जोड़ती हूँ कि गरीबों की बस्ती में, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, और मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, कि मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं। और एक शेर आप सभी के बीच पेश करती हूँ कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, कि सभी लोगों ने, कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, हमें मालूम है, कि हमें मालूम है बिकते यहाँ ईमान किसके हैं। और एक शेर देखिएगा कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, मेरे बारे में झूठे दे रखे बयान किसके हैं। और मक्ता पेश करती हूँ, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं।
1: सखियो अभी आपने ज्योति दोहरे से काव्य पाठ सुना। सखियों समर वेकेशंस चल रहे हैं और हम बच्चों को नई नई एक्टिविटी से

जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम देखते हैं जब भी बच्चों को अपने मन के अनुसार कुछ करना होता है तो वे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो कभी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लंबे समय तक देखने में अपना समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से वे ओवर एक्टिव होने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है। सखियों, उनकी परिवर्तनशील भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें योग से जोड़ें। बच्चों में योग के प्रति रुचि जागृत करें, उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करें। सखियों, बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, उनके साथ खुद भी योगा करें। एक शांत और सुरक्षित योगा स्पेस बनाएं, घर में एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को वहां से दूर रखें और उनके साथ अभ्यास करें। सखियों, जब वे हमें करते देखेंगे तो वे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। खेल खेल में 10-15 मिनट का अभ्यास कराते हुए योगासन को उनकी आदत में शामिल करें, साथ ही योग के प्रति उत्साहित करें। योग के आसनों को जानवरों या प्रकृति के नाम से जोड़कर मजेदार बनाएं। ताड़ासन, वृक्षासन, तितली आसन, भुजंगासन, सिंहासन कराएं। सखियों, इन योगासनों को करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है और इससे उनका संतुलन और एरोबिक क्षमता भी बेहतर होती है। सखियों, जब बच्चे सही आसन में बैठना सीखते हैं ना, तो वे अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्वस्थ शारीरिक आदतें शामिल होने लगती हैं। योग में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया बच्चों को एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने और उनके मन को शांत करने में मदद करती है। सखियो, योग करते समय बच्चे शरीर पर संतुलन बनाना सीखते हैं, नए आसन सीखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास आता है, अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्हें समझाएं कि योग दिनचर्या का सहज हिस्सा है, उसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इससे याददाश्त यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, पढ़ाई में मन अधिक लगता है और बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, हम बच्चों के सुबह के व्यायाम और सोने से पहले की दिनचर्या में सरल योगासन को शामिल कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से हमारी देखिए बॉन्डिंग है ना, वो और भी मजबूत होगी। वे अपनी बातों को आपसे और अधिक शेयर करेंगे और बच्चे आपके और भी करीब आ जाएंगे।

सखियों, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। हीट वेव को हम सभी महसूस कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक, शिकंजी, आम पना, मठा, छाछ, सत्तू का शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये पेट को ठंडा रखते हैं, साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी, मैंगो शेक का हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियों, इस समय आम तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। आम से बने व्यंजन का स्वाद हमें अलग ही सुख देता है। सखियों, आम रस आम के गूदे से बना स्वादिष्ट और ताजा पेय है, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है। सखियों, इस मौसम में इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, साथ ही ये पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सखियों, आम रस का प्रयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, साथ ही आइसक्रीम, केक में भी आम रस का उपयोग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम रस के बहुत लाभ होते हैं, जो गर्मियों में थकान को मिटाकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सखियों, आम रस विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम रस पाचन में सहायक होता है और इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। सखियों, आम रस में कैलोरी और अधिक होती है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है या मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, वो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सखियों, आप भी घर में आम लाएं, आम रस बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका लुफ्त और आनंद उठाएं, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को कवर करके निकलें और साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। और अब समय कह रहा है हमें चलने के लिए, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी सखी स्मृति तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं लोक भजन के साथ। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया, फिल्म मौसम का ये गीत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला

0: जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋता प्रताप बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़,

0: स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने, गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक, ऋचा स्वीटी, सागर रिया, रीत ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। मगरलोड धमतरी से पुनू राम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री राज साहू ने। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, नुपुर, मोनिका, ऋषिका और रॉबिन ने। ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सुनना पसंद किया है, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजले ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है शक्ति फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवी नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। CBSE ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग बिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांध्यकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोता सुने उनका नियमित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार युवा श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम विववाणी। मैं हूं आपका होस्ट हिंदोस राज।
1: और मैं हूं अनुष्का। श्रोताओं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाओं का स्पर्श और आसमान में छाए बादल, मानो ऐसा लगता है मॉनसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी हो।
0: बिल्कुल ठीक अनुष्का। और इसी सुहाने मौसम की ताजगी के साथ हम लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम युववाणी, जहां युवाओं के विचार, सपने और उनकी आवाज को मिलती है एक नई दिशा, एक नई पहचान।
1: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपसे पूछ लेते हैं आज के हमारे दो प्रश्न। तो श्रोताओं, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है।
0: तो दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है।
1: श्रोताओं, इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको खोज के रखने हैं, और इसी के साथ हम भी आपको कार्यक्रम के अंत तक इनका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

0: तो दोस्तों, आज 3 जून है, यानी विश्व साइकिल दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ परिवहन का संदेश देता है।
1: बिल्कुल ठीक। साइकिल सिर्फ एक साधन कतई नहीं है, बल्कि सेहत और पर्यावरण दोनों की दोस्त है। रोजाना थोड़ी देर साइकिल चलाने से शरीर फिट रहता है और प्रदूषण भी कम हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा राज। आज के समय में जब ट्रैफिक और प्रदूषण बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं, साइकिल एक सरल और प्रभावी समाधान बनकर सामने आती है।
1: हाँ अनुष्का, क्या तुमको याद है बचपन में साइकिल सीखने का वो उत्साह, गिरना, संभलना और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ सड़क पर दौड़ लगाना?
0: बिल्कुल, कैसे नहीं होगा यार। और वही साइकिल आज भी हमें आत्मनिर्भरता, संतुलन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि मतलब दिन प्रतिदिन जब चार पहिया के वाहन बढ़ रहे हैं, नया नया आविष्कार हो रहा है, तो इन दोनों साइकिल भी अपनी जो हिम्मत है, मतलब जो पुराना संसाधन है परिवहन का, वो आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, बिना किसी ईंधन के, बिना किसी पेट्रोल के, मुझे ऐसा लगता है। तो साथियों, आइए इस विश्व साइकिल दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि जहां संभव हो या छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग हम जरूर करेंगे
0: और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे।
1: हाँ, और अनुष्का, क्या तुम्हें पता है कि साइकिल को दुनिया का सबसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों में से एक माना जाता है?
0: बिल्कुल राज। साइकिल न केवल ईंधन की बचत करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करती है। और यही कारण है कि आज दुनिया भर में लोग साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे फिटनेस के लिए ही क्यों ना हो फिर।
1: हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है साथियों कि साइकिल चलाना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। ये तनाव को कम करता है और मन को भी तरोताजा बनाए रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा। सुबह की ताजी हवा और साइकिल चलाने का अनुभव ही कुछ अलग होता है। ये हमें प्रकृति के करीब लाता ही है और दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी देता है।
1: बिल्कुल ठीक। और अनुष्का, मुझे ऐसा लगता है कि हम रोजाना बिल्कुल 7 दिन कार का उपयोग करते हैं, टू व्हीलर वाहन का उपयोग करते हैं, तो हमें सप्ते में कुछ ऐसे दिन निकालना चाहिए कि हम साइकिल से भी यात्रा करें। मतलब उसमें कोई शर्म झिझक नहीं होना चाहिए, चाहे हम दफ्तर जाएं, फिर गार्डन जाएं, कोचिंग जाएं, स्कूल जाएं, तो एक अच्छा सा साधन ये मुझे लगता है। और दोस्तों, अगर हम रोज़मर्रा की छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का माहौल निर्माण कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज के दिन अपने घर के किसी कोने में खड़ी साइकिल की धूल जरूर साफ कीजिए और एक छोटी सी साइकिल राइड पर निकल जाइए।
1: हाँ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयासों से ही होती है साथियों।
0: और शायद यही विश्व साइकिल दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं।
1: हाँ, तो साथियों, आजकल सड़कें बिल्कुल बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, छोटे वाहन, बड़े वाहन, सभी के लिए एक सुनिश्चित समय भी तय कर दिया गया है कि बड़े वाहन कब निकलेंगे, छोटे वाहन कब निकलेंगे। पर आपने एक बात गौर की होगी साथियों कि जब दो पहिया वाहन चलते हैं, यानी टू व्हीलर एक्टिवा या फिर थ्री व्हीलर वाहन भी होते हैं, उसके लिए साइकिल का स्थान सीमित सा होता जा रहा है। आपने देखा ही होगा कई बार बड़ी बड़ी सड़कें बन जाती हैं, चौड़ी सड़कें बन जाती हैं, जिसपे बस क्रॉसिंग तो होती होती है, बस छोटी वाहनों के लिए, साइकिल के लिए एक उचित स्थान नहीं होता है। तो आप ऐसा भी प्रयास कीजिए कि जहाँ पर हमारे शहर में ऐसे स्थान है जहाँ पर साइकिल को भी प्राथमिकता दी जा रही है बड़े वाहनों के साथ, तो आप ऐसे सुगम रास्तों का अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
0: तो आइए श्रोताओं, इसी के साथ हम सब मिलकर आज विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विश्व साइकिल दिवस की। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, फिल्मों का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। कुछ फिल्में अपनी कहानी के लिए याद रखी जाती हैं, तो कुछ अपने कलाकारों के लिए और कुछ अपने संगीत के लिए। आज युवाणी के विशेष सेगमेंट में एक ही फिल्म से हम बात करेंगे, साल 2002 की एक ऐसी म्यूजिकल लव स्टोरी की जिसके गीत आज भी श्रोताओं की यादों में रचे बसे हुए हैं। और इस फिल्म का नाम है साथियों, तुमसे अच्छा कौन है।
1: साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन दीपक आनंद ने किया था। फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी और कुमार तौरानी थे।
0: मुख्य भूमिकाओं में नकुल कपूर, आरती छाबड़िया,

0: किम शर्मा, रीति अग्निहोत्री और रघुवीर यादव जैसे कलाकार नजर आए थे साथियों।
1: श्रोताओं, फिल्म का संगीत दिया था उस दौर की सुपरहिट संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने, जिनके संगीत ने 90 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक के फिल्म संगीत को एक अलग ही पहचान दी।
0: दोस्तों, इस फिल्म के गीतों को युवा वर्ग ने खूब ज्यादा पसंद किया। मधुर धुने, रोमांटिक बोल और दिल को छू लेने वाली गायकी इसकी सबसे बड़ी ताकत रही।
1: दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर से। सुनहरे रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले और पर्यटकों की चहल पहल के बीच रहता है एक साधारण युवक अर्जुन।
0: अर्जुन पेशे से एक गाइड और बस ड्राइवर है साथियों, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना है कि वो एक सफल प्रसिद्ध गायक बनना चाहता है। उसके लिए संगीत केवल शौक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। जब भी उसे मौका मिलता है वो पूरे दिल से गाता है और अपने सपनों को जीतना चाहता है।
1: तो श्रोताओं, इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक है और जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: तो साथियों, एक दिन जैसलमेर घूमने आई नैना दीक्षित अर्जुन की आवाज़ सुनती है। उसकी सादगी और गायकी दोनों उसे प्रभावित करते हैं। नैना महसूस करती हैं कि इतनी अच्छी प्रतिभा को एक बड़े मंच की ज़रूरत है। वह अर्जुन को सलाह देती हैं कि उन्हें मुंबई जाकर अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए।
1: अर्जुन पहले तो संकोच करता है, लेकिन फिर अपने सपनों की खातिर मुंबई जाने का फैसला कर लेता है।
0: मुंबई पहुंचने के बाद अर्जुन की असली परीक्षा शुरू होती है। सपनों के शहर में हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, और उन्हीं में से एक अर्जुन भी है।
1: अर्जुन नैना के घर में उसकी माँ, बहन अनु और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहने लगता है। यहाँ उसे अपनापन मिलता है, लेकिन करियर की राह आसान नहीं लगती।
0: अर्जुन म्यूजिक कंपनीज, निर्माताओं और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर भी लगाता है। हर जगह वो अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। कई बार उसे निराशा भी मिलती है और कई बार अपमान भी सहना पड़ता है,
1: लेकिन नैना लगातार उसका हौसला बढ़ाती रहती है। वो उसे याद दिलाती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते।
0: जब लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलती, तब नैना एक अनोखा फैसला करती हैं। वो अर्जुन के लिए एक ओपन म्यूजिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, जहां वो रोड शो करके लोगों को एंटरटेन कर सकता है।
1: और यही प्रोग्राम अर्जुन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वहाँ मौजूद एक अमीर आधुनिक सोच वाली लड़की बॉबी गुजराल उसकी आवाज़ सुनती है। बॉबी को उसकी अर्जुन की प्रतिभा पर विश्वास सा हो जाता है।
0: वो उसे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम दिलाने की कोशिश करती हैं। जब कुछ लोग अर्जुन को मौका देने से मना कर देते हैं, तब बॉबी अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग करके उसके लिए एक नई राह बनाती हैं।
1: धीरे धीरे अर्जुन को पहचान मिलने लगती है और उसकी आवाज़ लोगों के दिल तक पहुँच जाती है।
0: और कुछ ही समय में अर्जुन एक फेमस गायक बन जाता है। उसके गाने हिट होने लगते हैं और वो संगीत जगत का एक उभरता हुआ सितारा बन जाता है।
1: लेकिन सफलता के बावजूद अर्जुन अपने पुराने रिश्तों को नहीं भूलता। वो नैना और उसके परिवार के प्रति हमेशा कृतज्ञ और आभारी रहता है।
0: दूसरी ओर साथियों, बॉबी के मन में अर्जुन के लिए एक प्रेम पैदा हो जाता है। वो चाहती हैं कि अर्जुन केवल उसी का हो जाए, लेकिन अर्जुन के दिल में नैना के लिए सच्चा प्रेम होता है।
1: यहीं से कहानी भावनात्मक मोड़ लेती है। बॉबी को जब ये एहसास होता है कि अर्जुन कभी उसे उस तरह प्यार नहीं कर पाएगा जैसा वो चाहती है, तो वो अंदर से टूट जाती है।
0: भावनाओं में बहकर वो एक खतरनाक कदम उठा लेती हैं और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।
1: फिल्म के अंतिम भाग में अर्जुन को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मंच पर खड़े होकर वो अपनी सफलता के पीछे योगदान देने वाले लोगों का धन्यवाद जाहिर करता है।
0: वो विशेष रूप से बॉबी का आभार व्यक्त करता है, क्योंकि यदि उसने उस पर विश्वास न किया होता तो शायद उसकी प्रतिभा दुनिया तक नहीं पहुंच पाती।
1: उधर दुर्घटना के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी बॉबी दूर बैठकर टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रही होती है। यह दृश्य दर्शकों को भावुक कर देता है साथियों, और फिल्म को एक मार्मिक अंत प्रदान करता है।
0: दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका संगीत था। नदीम श्रवण ने ऐसे गीत दिए जो युवाओं की जुबान पर चढ़ गए। रोमांस, सपने, संघर्ष और भावनाओं को संगीत के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया।
1: दोस्तों, फिल्म में ये संदेश भी छुपा है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज कतई नहीं होती। सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जरूरी होता है।
0: और सबसे जरूरी बात साथियों, सफलता मिलने के बाद

0: भी अपने मूल्यों यानी अपनी रूट्स और रिश्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से आप ग्रो करते हैं। सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है।
1: तो दोस्तों, तुमसे अच्छा कौन है एक ऐसी फिल्म है जिसमें सपनों की उड़ान है, संघर्ष की कहानी है, प्रेम की भावना है और संगीत की मधुर मिठास है।
0: ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ, चैलेंजेस, उतार चढ़ाव चाहे कितने भी आ जाएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो मंजिल एक दिन अवश्य मिलती है।

0: दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक प्यारे से सफर पर, एक बहुत ही सुंदर से और पीसफुल से टूर पर। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में बसे एक छोटे से गांव में, जहाँ वक्त जैसे थोड़ा सा धीमे चलता है और वहाँ के लोग स्लो डाउन को बहुत ज्यादा ही अटेंशन देते हैं। तो जी हाँ, इस जगह का नाम है पुलगा।
1: दोस्तों कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धूप देवदारों की पेड़ की शाखाओं से छनकर आपके कमरे में आ रही है। खिड़की के बाहर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दूर बहती पार्वती नदी की आवाज़ है और हाथ में गर्म चाय का कप है। यही है साथियों पुलगा की खूबसूरती का अंदाज।
0: पुलगा कसोल और तोश जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के पास एक शांत और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहां पहुंचते ही शहर की भाग दौड़ और शोर शराबा मानो जैसे पीछे छूट गया हो।
1: साथियों यहां बने छोटे छोटे होम स्टे आपको किसी होटल से ज़्यादा घर जैसा अपनापन देते हैं। लकड़ी से बने कमरे, बालकनी से दिखते पहाड़ और रात में तारों से भरा आसमान, ये सब मिलकर आपकी यात्रा को और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार बना देते हैं।
0: श्रोताओं कहते हैं कि पुलगा का हर रास्ता एक नई खोज की ओर ले जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध फेरी फॉरेस्ट यानी कि परियों का जंगल घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। जंगल में चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी जादुई दुनिया में आप प्रवेश कर गए हैं।
1: यहाँ के लोग बेहद ज़्यादा सरल और मेहमान नवाज हैं। उनकी मुस्कान, पहाड़ी संस्कृति इस जगह की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है।
0: अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें शांत और खूबसूरत कैफेज पसंद है या जिन्हें कैफे हॉपिंग का बहुत शौक है, तो पुलगा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यहाँ के छोटे छोटे एस्थेटिक कैफे अपनी विंटेज सजावट, लकड़ी के फर्नीचर, धीमे म्यूजिक और सुकून भरे माहौल के लिए जाने जाते हैं। एक बुक, एक कॉफ़ी और पहाड़ों का नज़ारा, आय है व्हाट अ इमेजिनेशन। शायद खुशियों की परिभाषा इतनी ही सरल है।
1: दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पुलगा आखिर पहुंचा कैसे जाए, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के भुंतर तक पहुंचना होगा। भुंतर से सड़क मार्ग द्वारा बरशेणी जाया जाता है। बरशेणी से पुलगा तक लगभग 20 से 30 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक है। ये रास्ता भी अपने आप में एक अनुभव कराने वाला है, जहाँ हर मोड़ पर पहाड़ों की खूबसूरती और आपका स्वागत करती रहती हैं।
0: श्रोताओं पुलगा उन यात्रियों के लिए एकदम सही जगह है जो भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन शांति, प्रकृति और अपने विचारों के साथ बिताना चाहते हैं। यहाँ की घड़ी की सुइयाँ नहीं बल्कि पहाड़ों की हवा आपके दिन का समय तय करती हैं। और तो कभी अगर आपको अपने को सुकून की तलाश हो, प्रकृति के करीब कुछ पल बिताने हो या खुद से मिलने का मन हो, तो पुलगा आपका इंतजार कर रहा है।
1: मुझे तो लगता है हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहाँ पर छोटे छोटे गांव करना, एक्सप्लोर करना अपने आप में एक बड़ी बात है।
0: हाँ।
1: तो जब भी समय मिले ठंड में या फिर गर्मियों में, आप जैसा संभव हो निकलिए और अपने

0: को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इंडिया में इतना इतना कुछ खूबसूरत घूमने के लिए जगह है कि आप घूमेंगे, दर्शनीय स्थानों पर जाएंगे तो अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे।
1: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, जैसे कि बारिश, कभी कभी बारिश का कोई मौसम नहीं होता है ना, जैसे बेवजह की बारिश।
1: साथियों, ना बादलों का कोई वादा होता है, ना मौसम विभाग की कोई चेतवानी, फिर भी अचानक कुछ बूंदें आकर दिल को भिगो जाती हैं। साथियों, मुझे लगता है कि बारिश होती है बेवजह बारिश। बारिश कभी ऐसा लगता है कि बेवजह ही होने लग जाती है। आजकल तो मौसम ऐसा हो गया है साथियों कि कभी धूप तो कभी बारिश कभी ठंड। आपने अनुभव किया होगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज एकदम कैसे हो जाता है। पहले के जब मौसम होता था तो पेड़ पौधे होते थे, नदी तालाब होते थे, एक पर्यावरण का बिल्कुल निरंतर साइकिलिंग चलती रहती थी। पर आजकल देखा जाता है कि हम पर्यावरण को तो प्रदूषित कर ही रहे हैं, उसके साथ पेड़ भी नहीं लगा रहे हैं, और नदी जो हैं उनको भी स्वच्छ रखने का काम नहीं कर पाते हैं। कभी प्लास्टिक, कभी क्या, ऐसा सब चलता रहता है। तो मुझे लगता है इन सब मौसम का जो अनिश्चित काल है, कभी भी बारिश होना, कभी भी गर्मी होना, सर्दी होना, मुझे लगता है कि ये सब एक साइकिल जो बिगड़ी हुई है पर्यावरण की, उसी का नतीजा है। तुम क्या कहोगे?
0: बिल्कुल श्रोताओं, ये बारिश वही होती है जो बेवजह की होती है, जिसे हम एसिडिक रेन भी कहते हैं, जिसे पहली बारिश कहा जाता है, जिसमें अक्सर भीगना हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और खिड़की के बाहर गिरती बूंदों की तरह।
1: मुझे लगता है तुम हंसी में, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। मुझे
0: ऐसा
1: लगता है
0: बारिश से एक इंसिडेंट याद आ रहा है, बारिश का एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, कि जो बेवजह की बारिश थी, जिसमें पहले मुझे भीगने बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो मतलब हम लोग कहीं पर जा रहे थे और मेरी फ्रेंड ने मुझे एकदम धक्का दे दिया, तो वो बारिश जो गिरी और उसके बाद जो मैंने उस पर गुस्सा किया। राज, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: हाँ, मुझे बारिश से एक चीज जरूर याद आ जाती है कि हम बारिश में जो है दोस्त जब होते थे स्कूल से आते थे, हमारे 4-5 का समय था स्कूल से छुट्टी होने का, तो हमारे पास साइकिल होती थी। और आज विश्व साइकिल दिवस भी है, जिसमें हमने बात की साइकिल के बारे में, तो हम बिल्कुल साइकिल चलाकर आते थे और बिल्कुल सड़कों पर पानी भरा होता था उस समय इंदौर की सड़कों पर।
0: तो बिल्कुल तो मतलब एक मेमोरीज को भी इंडिकेट करती है, मतलब कुछ यादें भी यूं ही दस्तक दे जाती हैं बारिश के साथ साथ, जैसे किसी पुराने गीत की धुन, किसी हंसी की गूंज, और या फिर किसी अधूरी कहानी का एक पन्ना ही क्यों ना हो।
1: हाँ, जिसका कोई कारण कतई नहीं होता साथियों, लेकिन एहसास बहुत गहरा छोड़ जाती है बारिश।
0: तो श्रोताओं, हम यही कहेंगे कि आने वाली बारिश को आप खूब इंजॉय करिए, मॉनसून्स को एकदम परफेक्टली फैंटास्टिक बनाइए। तो इसी के साथ हमने जो आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो अब वक्त आ गया है उनका उत्तर देने का। तो जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो जिसका उत्तर है केरल।
1: साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है, तो उसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया।
0: तो इसी के साथ अब अंत होने का समय है कार्यक्रम के, और चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंत की ओर। तो दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त अनुष्का
1: और अपने साथी राज को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:45 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आपको सुनवाते हैं फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा अरुण भैरव ने और संगीत साजिद वाजिद का है।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, एक सूचना है। हेलो डॉक्टर संबंधी ये सूचना है। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण।

सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार 4 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। फ़ोन करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 के मध्य विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। और अब रुख करते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर और सुनवाते हैं फिल्म साजन चले ससुराल का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत का अंतिम नगमा फिल्म जानवर सी, अलका याग्निक की आवाज़, अलका याग्निक, सोनू निगम, जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में है और इस गीत को लिखा है समीर ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT के तहत उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी।

0: हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
1: जी,
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
1: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी,
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी,
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
1: जी,
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी,
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीच की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
11: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
11: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
11: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के डर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
11: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
11: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
10: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा माँ,
10: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
6: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
10: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरा माँ,
10: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
10: क्या?
6: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
10: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
11: हाँ गौरा माँ,
12: हाँ गौरा माँ,
10: चलो हम

0: सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ, हम सब तैयार हैं।
3: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
3: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
5: मिट्टी पानी और बयान,
0: मिट्टी पानी और बयान।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे
7: क्या कर रहे हो?
8: मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू।
6: अरे
2: भाई कौन है? रुको, इस पंख में जाएंगे पेड़ों से।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में बताओ? मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
2: चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
3: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।

0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम दत्ता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT के तहत उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं अभिजीत। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये सुंदर से गीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कलाकार हैं अभिजीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का इनसे ये अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज़ में कुछ नगमे। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं मान सिंह भोंदिया और साथी। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये पारंपरिक मालवी लोकगीत।

बाल विवाह पर ये बहुत खूबसूरत सा लोकगीत अभी हमने सुना, मानसिंह भूंदिया और साथियों की आवाज़ में। आइए अभिनी की आवाज़ में सुनते हैं ये पारंपरिक लोकगीत।

मान सिंह बोंदिया और साथियों की आवाज़ में भी आप मालवी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, दांत एवं जपड़ी की समस्या और समाधान। इस विषय पर डॉक्टर संदेश जैन से अनुराधा शर्मा की बातचीत होगी। साथ ही जाने पीएम कुसुम योजना के बारे में। रात 8 कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा। रात 9:15 पर चित्रगीत कार्यक्रम में सुनेगा सुनहरे पुराने फिल्मी गीत। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30। रात 10 होगा नाटक खामोश सच, प्रस्तुति राकेश जोशी की होगी। शास्त्रीय संगीत में रात 10:30 सुनेगा अभिषेक व्यास और साथियों का गिटार पर बजाया राग पुरिया। ये तो थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना से सुबह 6:05 पर। चिंतन करेंगे सुबह 6:30, आलेख पूजा शर्मा का होगा। खेती की बातें होंगी 6:35 पर। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40। साहित्य के कार्यक्रम में सुबह 7:20 पर अर्पित तिवारी का कविता पाठ और गज़लें होंगी। सुनहरे पल कार्यक्रम में सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे सुबह 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 8:30। लोक संगीत होगा कल सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर। कलाकार होंगे प्रभुलाल मालवी और साथी। सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 हरिहरन की आवाज़ में कुछ गीत होंगे। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 सुनेगा कैलाश पवार और साथी का गाया राग तोड़ी। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनेगा सुबह 10:05 पर। दोपहर 1:00 महिला सभा कार्यक्रम में सुनेंगे कहानी प्रतिमा सिद्धाई की स्वयं सिद्धा, जाने लखपति दीदी योजना के बारे में। रूप लावण्य में जाने गर्मी में व्यायाम के लिए अपनाए स्मार्ट तरीके। फैमिली फिटनेस इस क्रम में आप जानेंगे गर्मी में चेहरे को रखें कूल और हाइड्रेट कैसे, इस विषय पर जानकारी होगी। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5:00 युवानी कार्यक्रम से। शाम 5:45 पर सुनेगा फिल्म संगीत। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता पोषण उद्यान और गृह वाटिका एक पोषण सुरक्षा जानकारी, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कल रात 8:00 रिले करेंगे। दिल ने फिर याद किया, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:15। चित्रगीत कार्यक्रम में रात 9:15 सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। रात 9:30 पत्रों पर आधारित कार्यक्रम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन भावन। रात 10:00 प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कल रात 10:00। ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लीजिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा है कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
3: हमारे गाँव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह है 11 समूह है, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संध्या सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने जीडब्ल्यू एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए एसटी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाला ये सब बहन नख है न सब भाई नख है। अनुराधा की राम राम। बहनों ने देखो अपन अपना खेत छे तो अपन छे, क्योंकि खेत होएगा तो काम अपन अन्न पैदा करांगा, न अन्न होएगा तो मनुष्य को जीवन चलेगा। तो खेत बचाओ अभियान जी छे वो बहुत बड़ो आंदोलन छे भारत सरकार को। ये अभी अभियान चली रोज 1 जून से 30 जून का बारे में, एक बारे में आज अपन सबसे पहला जानकारी सुनी लेवा, एक बाद अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ांगा। डॉक्टर के एच सिंह अपन का जानकारी दे रहा है, जी की निदेशक छे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से।
1: एच सिंह निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, आपको इस बात के लिए जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि भारत सरकार के तत्वाधान में हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा एक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का प्रारंभ माननीय कृषि किसान एवं कृषक कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 1 जून 2026 को रायसेन जिले के रामास्या गांव से प्रारंभ किया गया। खेती बचाओ अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन दिनों जैसा कि आप देखते हैं, अधिकांशतः किसान भाई जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपनी खेती में करते हैं, जिसका प्रभाव यह हुआ है कि हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। यदि उर्वरकता इसकी कम होती चली गई तो ये समस्या हो जाएगी कि एक तो उत्पादकता घटेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो भूमि या जो जमीन छोड़ करके जाएंगे वो कृषि के योग्य उतनी नहीं रह पाएगी। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम सबका यह प्रयास है कि हम उन विधियों को अपनाएं जिससे कम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भी उतनी ही पैदावार जो आज हम रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से ले रहे हैं अथवा उससे अधिक पैदावार लेने में सक्षम हों। इसके अनेक अनुसंधान जो किए गए उनके परिणामों से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जो दलहनी फसल है, जैसे मैं सोयाबीन के बारे में आपको बताऊं कि यदि हम बीज को अच्छे से उपचारित करें और बुवाई से कुछ समय पूर्व ही उसे उपयुक्त राइजोबियम कल्चर के द्वारा या जो आज अच्छे अच्छे कंसोर्सिया जिसमें कई प्रकार के जीवाणुओं को मिला करके दिया जाता है, यदि उनका सही से प्रयोग करें तो हम 25% कम रासायनिक उर्वरक डालने के बावजूद अधिक पैदावार लेने में सफल रहे। तो इस तरीके की अनेक तकनीकें अब विकसित हो रही हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के माध्यम से, नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से। आज नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर तो काफी अनुसंधान हुआ है। शुरुआत के 2 से 3 वर्षों में उत्पादकता में थोड़ी कमी जरूर आती है, परंतु 3 साल के बाद ऐसा देखा गया है कि उत्पादकता पुनः उसी लेवल पर आ जाती है और वहां हमें लगभग 0 रसायनों का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह की तकनीकियां आज उपस्थित हैं, आज हमको उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है जिससे वो जन जन तक पहुंचे और हर व्यक्ति उसका लाभ लेकर के अपने खेती की उर्वरकता को बढ़ाए और खेत बचाओ अभियान का हम लोग हिस्सा बने। यही मेरा एक प्रयास है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें हर जन जन की भागीदारी हो और 1 से 30 जून के बीच में पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया जाएगा। आपके पास वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स तथा केवीके के बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हर विषय के विशेषज्ञ इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि गांव-गांव जाकर के इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। भाइयों एवं बहनों, आज मैं
0: अपन इतनी अच्छी जानकारी का लेना डॉक्टर के एस सिंह का धन्यवाद देवान जी की राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में निदेशक का पद पर कार्यरत है न उन्हें अपूर्ण खेत बचाओ अभियान का बारे में इतना विस्तार से।

0: जानकारी दी। आमा बात करांगा पीएम कुसुम योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षान उत्थान महाअभियान ई नाम छे पूरो पीएम कुसुम योजना को। ये केंद्र सरकार की योजना छे न ई योजना को उद्देश्य ई छे कि पूरा कृषि क्षेत्र ख डीजल से मुक्त करनो न हमारा किसान भाई बहन नख सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर पंप न का बारे में सोलर प्लांट का बारे में स्थापित करने का लेना सहायता करनो जैसे कि किसान न की आय बढ़ी सका क्योंकि यदि डीजल से चलेगा तो उनका खर्च लगेगा पर सोलर से चलना में उनका एक बार लगेगो तो उसका बाद कहीं भी खर्चों नहीं देना पड़ना को। इन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत को 30-40% तक अनुदान किसान भाई बहन का मिली रोज न कभी अपन बात कराना केंद्र सरकार न राज्य सरकार मिली ना तो 60% तक सब्सिडी दे रही तो किसान भाई बहन का लगावना का लेना केवल 30-40% तक को भुगतान सोलर पंप लगावना में करना पड़ेगा। आसो कोई पंप जी की पहले से मौजूद हो जिनका पास की पहले से बिजली का ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंप हो तो ओखा भी सोलर पंप में सोलर सिस्टम से बदलना में इन्हीं योजना में सहायता मिलेगा। एक अलावा किसान कोई भी बंजर भूमि पर 500 किलोवाट से लेना ना 2 मेगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट भी लगाई सकाज। किसान ऐसा क्षेत्र में जहाँ पर कि बिजली उपलब्ध ही नहीं है ऐसे ऑफ ग्रिड सोलर पंप वहाँ भी लगाई सकाज पर पात्रता के खच है कोई भी स्थायी निवासी जी की भारत को हो या कोई भी किसान। एक अलावा किसान समूह पंचायत या किसान उत्पादक संगठन भी एकामा शामिल हुई सकज। आवेदन करना को खाली एक तरीको छे योजना का लेना भाग लेना योजना में यदि आप भाग लेना चाह रहा हो तो किसान नवीन न नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का अलावा कहीं भी जानू नहीं है आपका। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए ना इन योजना का लेना पीएम किसान योजना का लेना पंजीयन कराउनु। तो ये तो थी अपनी पीएम कुसुम योजना की जानकारी। कार्यक्रम में अमा सुनांगा सोयाबीन की उन्नत प्रजाति न का बारे में जानकारी। जानकारी दे राज सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय गुप्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आप लोगों के सम्मुख नई वैरायटी सोयाबीन की नई वैरायटीज के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों को सोयाबीन की नई वैरायटियों के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप लोग बाजार में बिक रही जो गलत वैरायटियां हैं उसके बारे में जागरूक रहें और उनके पीछे ना जाएं। तो साथियों अपने सेंट्रल जोन यानी कि मध्य क्षेत्र जहां पर की इंदौर आता है वहां पर दो तरह की वैरायटीज डेवलप की जाती हैं। एक अर्ली वैरायटीज जो जल्दी पकने वाली होती हैं, ये वैरायटी लगभग 95 दिन तक में पक जाती हैं, और एक पूर्ण अवधि में यानी कि 100 से 105 दिन की अवधि में पकती हैं। तो अर्ली वैरायटीज में किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वैरायटी जो बहुत ही अच्छी नई वैरायटीज है उसमें JS 2433 है, JS 2303 है, JS 2309 है। ये वैरायटी जो है 2025 और 2025 में लगभग रिलीज हुई है और इन वैरायटीज को जब आप उगाएंगे तो आपको लगभग 23 से 25 क्विंटल की उपज प्राप्त हो जाएगी। और नई वैरायटीज है और इनमें लगभग सभी मुख्य बीमारियों के लिए प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है और इनका सीड वेट भी अच्छा रहता है। इनका सीड वेट लगभग 10 से 11 ग्राम के लगभग है। इनमें ऑयल जो है वो भी 20 से 21% तक है और मुख्य बीमारियां जैसे कि बाईएमबी, आरएबी, चारकोल रॉट, इनके लिए भी या तो प्रतिरोधक क्षमता है या फिर टॉलरेंस है इनके लिए। थोड़ी सी पुरानी वैरायटीज अगर हम लोग देखें तो उसमें NRC 157, NRC 131 आती हैं। ये भी जल्दी पकने वाली वैरायटीज हैं, इनका भी 23 से 25 क्विंटल तक आप उपज ले सकते हैं। और जो 157 है वो 2023 में मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए रिलीज की गई है और ये 94 दिन के लगभग पक जाती है। NRC 131 2023 में मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए रिलीज की गई है और इसकी उपज भी लगभग 20 क्विंटल के लगभग आप लोग ले सकते हैं। और मैच्योरिटी ड्यूरेशन एनआरसी 131 का लगभग 93 दिन होता है और इन दोनों ही वैरायटियों का सीड वेट लगभग 10 से 12 ग्राम के लगभग होता है। दोनों ही सेमी डिटर्मिनेट होती हैं।

0: ये दोनों ही अवयवों के लिए ये फ्री है। 100 सीट वेट भी इसका जो सीट का दाना है वो भी लगभग 12 से 13 ग्राम का होता है और प्रतिरोधक क्षमता है। और सबसे ही अच्छी वैरायटी मैं आपको अब बताऊंगा जो आपको लगानी ही चाहिए, वो है अपनी एनआरसी 150। एनआरसी 150 वैसे तो 2023 में रिलीज हुई है, लेकिन इसका कोई कंपेरिजन नहीं है, इसका कोई तुलना नहीं है। ये बहुत ही अच्छी उपज देती है। हमारे हमारे संस्थान में ये वैरायटी 25 से 30 क्विंटल तक की इसने उपज दी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जल्दी होने के बावजूद भी इसके पौधे की ऊंचाई लंबाई काफी ज्यादा रहती है, तो आप लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हार्वेस्टिंग के समय में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छी खासी इसकी ऊंचाई आती है। इसका जो बीज दाना है वो भी काफी बड़ा है, लगभग 11-12 ग्राम के लगभग इसके 100 बीजों का वजन होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हाईली रेजिस्टेंट है ये। चारकोल रॉट जो अपने यहाँ आती है, बहुत ही मुख्य बीमारी है उसके लिए और दूसरी भी बीमारियों के लिए, ये काफी इसमें रेजिस्टेंस होती है। और ये वैरायटी को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये वैरायटी जरूर लगाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपनी दूसरी जो सबसे अच्छी वैरायटी जो नॉर्मल मैच्योरिटी में है, वो वैरायटी अपनी JS 2172 है। 2172 अपनी 2023 में रिलीज हुई थी और पूरे सेंट्रल जोन के लिए रिलीज हुई थी। इसकी औसत उपज लगभग 25 क्विंटल आप लोग आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो आप इसमें आराम से 30 क्विंटल तक इसकी 1 हेक्टेयर में उपज को ले सकते हैं। मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो हम लोग अपने खेतों पर देख रहे हैं वो 98 दिन के लगभग आता है। अगर आपके क्षेत्र में थोड़ा बारिश ज्यादा होती है, पानी भरता है, तो हो सकता है कि लगभग 105 दिन के लगभग आ जाए। वैसे ये वैरायटी भी बहुत ज्यादा दिन नहीं लगती है पकने के लिए। सफेद फूल होते हैं इस वैरायटी के और लगभग इसका 100 ग्राम बीजों का वजन जो है वो 12 ग्राम के लगभग होता है। और इसके अंदर भी मुख्य बीमारी जो जैसे कि चारकोल रॉट हो गई, बाईएमबी हो गई, आरएबी हो गई, इन सभी के लिए इनमें रेजिस्टेंस है। और इसमें लगभग जो ऑयल है वो 21% है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को अब दो ऐसी वैरायटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो अब रिलीज होने वाली हैं, वो है एनआरसी 268 और एनआरसी 270। ये वैरायटीज लगभग आपको 30 क्विंटल की उपज दे देंगी, लेकिन अभी ये वैरायटी भारत सरकार ने अधिसूचित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि 1 या 2 महीने के अंदर इसकी अधिसूचना आ जाएगी। तो आप लोग इन वैरायटीज पर भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी वैरायटीज। धन्यवाद।
1: सोयाबीन की उन्नत प्रजाति का बारे में अभी अपूर्ण का बता रहा था सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय गुप्ता। अपूर्ण इनका धन्यवाद देवान। अब कार्यक्रम में सुनांगा एक लोकगीत हेमलता उपाध्याय को गायल।

0: हम अलग अलग समय पर अपना स्टूडियो में अलग अलग विशेषज्ञ नखा आमंत्रित कराएं जी की बहुत अलग अलग तरह की जानकारी हमका देज। आज इनाज क्रम में हमारा स्टूडियो में आयल छे डॉक्टर संदेश जैन जी की जबड़ा रोग विशेषज्ञ छे। आज हम इनका से बात करांगा दांत न जबड़ा की समस्या नो का समाधान का बारे में। तो डॉक्टर संदेश जैन आपको हमारा स्टूडियो में स्वागत छे। राम राम।
1: थैंक यू। नमस्ते। राम राम।
0: हम सबसे पहले अपनी बात शुरू करा दांत न की या जबड़ा की समस्या न जी आई रही। अभी इना समय तो एक बहुत अच्छो ये छे कि लोग अपना दांत न का प्रति थोड़ा सा जागरूक हुई गए क्योंकि हाँ। उनका सुंदर देखणु पड़ा ने साथ में चबावना में भी आसानी हुई जाए तो एक सुंदरता भी रहे उनकी मुस्कुराहट में भी एक बहुत बड़ो काम छे। पर भोजन चबावना न पाचन क्रिया में एक काई महत्व छे दांत न को थोड़ा सा वहां से हम अपनी बात शुरू करें।
1: जी बिल्कुल। देखिए दांत जो है वो सबसे पहले तो अपन जो इंसान है वो भोजन में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो हम लोग देखते हैं आज की कंडीशन में लोगों को कि दांत अगर मिस हो जाता है दांत अगर किसी कारणवश अब नेचुरल दांत जो है जो बचपन से अपने पास है उसमें अगर कोई सड़न हो जाती है तो सबसे पहले समस्या आती है। दर्द की तो है ही बट अगर दर्द के अलावा भी देखा जाए तो खाने पीने में सबसे ज्यादा का रोल दांतों का होता है। एंड जो लोग मिस करते हैं वो यही करते हैं कि हम लोग अगर दांत का ध्यान अपनी जवानी में सही रख लेते तो हमको आज बुढ़ापे में नकली दांत का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो दांत का सबसे ज्यादा रोल तो खाने चबाने में है ही साथ में एक हृदय रोग में भी ये काफी हेल्प करता है। जैसे कैसे कि दांत का जो इन्फेक्शन है ऐसा देखा गया है कि जिनको ज्यादा सड़न होती है दांतों में और वो उस सड़न के साथ जीते रहते हैं अपने नॉर्मल दिनचर्या में तो कभी कभार वो इन्फेक्शन हृदय तक भी पहुंच जाता है।
0: अपने दांत से हृदय में भी समस्या
1: हो सकती
0: है।
1: इन्फेक्शन की समस्या होती है इसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि दांत का जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अपने खून के जो माध्यम से अपने हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय में इन्फेक्शन कर देता है। तो दांत का महत्वपूर्ण बहुत मतलब बहुत सफाई रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: मतलब बहुत जागरूक रहना की आवश्यकता है कि दांत में यदि वैसे तो साफ सफाई रखा पर यदि थोड़ी सी भी समस्या हुई रहे
1: जी
0: तो सबसे पहले जाना ना दांत का डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: एंड समस्या ना भी हो तो एटलीस्ट अपने को कम से कम 6 महीने से साल भर में एक बार एक रेगुलर चेकअप दांत का करना चाहिए क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि दांत में जब तक अपन समस्या का वेट करते हैं दर्द का वेट करते हैं इंतजार करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। वो दांत को या फिर तो निकालना पड़ेगा या फिर उसका रूट केनाल या नस का इलाज कराना पड़ेगा उसके बाद नकली दांत पे शिफ्ट होना पड़ता है।
0: मतलब थोड़ी सी भी समस्या शुरू हुई तो बढ़ना में ज्यादा समय नहीं लगता।
1: बिल्कुल।
0: यदि
1: बिल्कुल इसीलिए हर 6 महीने से साल भर में एक रेगुलर चेकअप आप भले कराते रहे भले कोई समस्या ना हो तो भी।
0: अच्छा पर लगे कि वो दांत की सफाई हो तो लोग थोड़े से डरी जाए समस्या
1: हो तो ऐसा लोग बोलते हैं कि दांत की सफाई अगर कराएंगे तो दांत ढीले पड़ जाते हैं या हिलने लगते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तब होता है जब आपके ऑलरेडी दांत बहुत ज्यादा खराब है और हड्डी दांत जिस हड्डी में है वो हड्डी गल चुकी है और उस हड्डी की जगह पे कैल्शियम जमा हो गया है तो जब अपन दांत की सफाई कराते हैं तो वो कैल्शियम निकल जाता है और दांत हिलने लगते हैं या ठंडा गर्म लगने लगता है। तो अगर आप हर 6 महीने से साल भर में एक चेकअप कराते रहेंगे तो आपको ये कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: मतलब दांत सड़नु शुरू होगा उसका पहला पुण्य का मालूम पड़ जाएगा या थोड़ा सा भी सड़न होगा तो अपन रोकी सकाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही समय पे उसका फिलिंग या
0: बस लोग कैसे डरज की भाई दांत डॉक्टर के पास जावांगा ना पछा अच्छा था उसका हिलने
1: हाँ वो समस्या है तो इसी वो तब होता है जब अपन समस्या का वेट करें तब जाते हैं और फिर कुछ इलाज होता है तो ऑलरेडी तकलीफ है पर वो दांत अभी हिल नहीं रहा है क्योंकि आसपास कैल्शियम जमा हुआ है पर उसको अगर अपन गंदगी जिसको बोलते हैं वो अगर अपन उसको निकाल देते हैं तो फिर दांत हिलने लगता है।
0: ना गंदगी नहीं निकला तो कभी बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं लगे
1: तो वो क्या होता है कि हड्डी गलती जाती है और हड्डी की जगह पे गंदगी जमा होती जाती है तो एक साथ जब उम्र बढ़ती है अपनी धीरे 45-50-55 साल के होते हैं तब वो दांत हिलने लगते हैं और फिर गिर जाते हैं।
0: मतलब अपन ये सोच रहा है कि गंदगी अभी तकलीफ नहीं दे रही है तो क्यों सफाई कराना
1: तो वैसा नहीं करें सफाई एक बार कराएं और सफाई करने के बाद ब्रशिंग टेक्निक होती है मंजन करने का तरीका होता है वो तरीका अगर अपन सही तरह अपनाएंगे तो वो वापस से दांत मसूड़े जो है वो पकड़ बना लेते हैं और दांत हिलना बंद हो जाते हैं।
0: आजकल बहुत छोटा छोटा बच्चा ना जैसे खान पान में बदलाव आई रोज कम उम्र में दांत सड़ जाए
1: जी
0: तो कई सड़ेल दांत का निकालना आवश्यक?
1: जी, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उनको अपन जो दूध पिलाते हैं, माँ का दूध या फिर बॉटल से अगर पिला रहे हैं, तो उस केस में देखा गया, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल केरीज। मतलब क्या होता है, बच्चे जब सोते हैं तो जनरली माँ क्या करती है कि दूध मतलब जो बॉटल है उसको मुंह में लगा के ही सुला देती है बच्चों को, दूध की, दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि दूध जो है, दूध की एक लेयर जो है वो दांत के ऊपर जमा रह जाती है रात भर के लिए, और बैक्टीरियाज को ग्रो होने के लिए समय मिल जाता है। तो उस केस में सारे दूध के दांत एक साथ सड़ जाते हैं। मतलब लोगों जो बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत होते हैं दूध के, वो 20 के 20 एक साथ सड़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें रोज रात को हर रोज दूध जमा हो रहा है और वो बैक्टीरिया को एक ग्रो करने के लिए समय मिल जाता है। एक समस्या तो ये देखी गई है। दूसरा देखा गया कि जब बड़े भी हो जाते हैं, थोड़े 8-10 साल के बच्चे, उसमें दूध के दांत में अगर सड़न आ जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो दूध का दांत है, ये 2-4 साल में निकल जाएगा, इसका इलाज ना भी कराएं तो चलेगा। तो उस केस में भी मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जो पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांत के नीचे से निकल के आते हैं, और अच्छा। जब वो निकल के आते हैं तो दूध के दांत को छूते हुए आते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पक्के दांतों में। तो अगर कोई सड़न है आपको, जो दूध के दांतों में सड़न है बच्चे को, और वो जब दूध का दांत निकलेगा तो पक्के दांत को सड़न ट्रांसफर करके निकल,
0: अच्छा।
1: तो सड़न जो है वो पक्के दूध के दांत से पक्के दांत में भी आ जाता
0: है। जो पहला
1: सड़ा ही निकलेगा वो बाहर, इन्फेक्शन पूरा बाहर निकलेगा उसके पहले ही उसमें सड़न लग जाए,
0: इन्फेक्शन पहला जो
1: जी जी।
0: तो ये तो बहुत ध्यान रखने की बात है, मतलब माता ना का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा का दांत हमेशा का लेना अच्छा रहे, एकालनों की परत नहीं जमा। पर एकालन का ही कर सके हमारी बहन ने कि दांत का ऊपर एक परत नहीं आ जाए, आप दूध की परत नहीं जमा।
1: उसके लिए दो चीजें करनी है, एक तो जब बच्चा सो जाए उसके बाद उसकी बॉटल निकाल ले, उसको लगा नहीं रखे कम से कम निकालने के बाद, और अगर बच्चा जगा हुआ है तो दूध पिलाने के बाद पानी पिलाएं उसको, कुल्ला कराएं और मंजन कराएं। अगर मंजन नहीं भी करा रहे हैं तो एटलीस्ट पानी से कुल्ला तो कराएं, जितनी बार भी दूध पिए। बाय चांस बच्चा सो गया दूध पीते पीते, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक साफ कपड़ा या तौलिया लेना है जिसको गीला करके, और एक दांत के ऊपर से बस एक बार उसको चला लेना है ताकि जो परत है वो निकल जाए, दूध की परत जो है वो निकल जाए, ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना हो पाए।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी दी आप। तो यदि दूध की एक परत दांत पर बनेल छे ओका हटाऊ आवश्यक छे, नहीं तो फिर बैक्टीरिया का कारण इन्फेक्शन बढ़ी सके। अपन थोड़ा सा बड़ा बच्चा न की बात करा, जी साइकिल चला ही रहा है जी या थोड़ी गाड़ी चला ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई खूब गिरता पड़ता रहे तो का कारण दांत टूटी जाए, कभी कभी आधा दांत टूटी जाए, या बड़ा लोग ना कि भी एक्सीडेंट हुई जाए, दुर्घटना में भी बहुत सारा दांत टूटी जाए, तो ऐसी स्थिति में कसो बचाव करना चाहिए या काई करना चाहिए को?
1: जी, सबसे पहले तो मैं ये मौका लेना चाहूंगा सब लोगों को बताने के लिए, हेलमेट का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जो बहुत जरूरी है अपने हिंदुस्तान में। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम थोड़ी दूर तक ही जा रहे हैं, 10 मिनट की दूर जा रहे हैं, तो बाइक पे जा रहे हैं या साइकिल पे भी जा रहे हैं तो हम क्यों कुछ पहने। सबसे पहले तो साइकिल के उसमें अगर मैं बात करूं कि जब मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जबड़े फ्रैक्चर के, चोट के, कोई दूसरे गाड़ी जो स्पीड से चल रही थी उसने साइकिल वाले को ठोकर मार दी और इसलिए लग गई उनको, तो मेरा तो यहां तक मानना है कि एक साइकिल का भी एक हेलमेट आता है। अगर अपन साइकिल भी चला रहे हैं तो उस हेलमेट, और हाईवे पे हैं तो उस हेलमेट को पहन के चलाएं, और टू व्हीलर अगर चला रहे हैं जैसे बाइसिकल हो गई, मतलब मोटरसाइकिल हो गई, तो उस पे तो अपने को फुल फेस हेलमेट पहनना चाहिए। आजकल दो टाइप के हेलमेट आते हैं, एक तो सिर्फ जो सर को कवर करता है, दूसरा जो जबड़े और सर दोनों को कवर करता है। क्योंकि ये भी देखा गया है कभी कभार हेलमेट तो पहना हुआ है लेकिन चोट जो है वो थोड़ी पे या जबड़े पे लगी है, तो फ्रैक्चर हेलमेट होने के बाद भी फ्रैक्चर हो गया है। तो फुल फेस हेलमेट पहनना चाहिए अपने को, एंड थोड़ी सी भी दूर जा रहे हैं तो भी हेलमेट आवश्यक पहने, और अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए पहने। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने एक लास्ट मंथ ही एक बच्चे को ऑपरेट किया, 21 साल का बच्चा था, उसके चेहरे की ऐसी कोई भी हड्डी नहीं बची थी जो जुड़ी हुई हो, सारी टूट चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। आज वो फिलहाल ठीक है, लेकिन हमेशा उसको जब भी मैं मिलता हूं तो मुझे दुख होता है कि इसका पूरा चेहरा बदल गया, और हमेशा जब वो अपने आप को देखेगा तो उसको वो इंसिडेंस ही याद आता है कि काश अगर उस दिन मैं हेलमेट पहना होता तो ये सब समस्या ना होती।
0: मतलब हेलमेट खाली अपना सिर की सुरक्षा नहीं करी रही, अपना आने वाला जीवन का लेना आवश्यक
1: है। बहुत बहुत बिल्कुल।
0: एक अपन ये भी देखी रहा है कि बच्चा न में दांत की जन्मजात विकृति न रहे, जबड़ा की भी विकृति न रहे, तिरछा छे का देखना मालूम पड़ा।

0: तो आसामा काई सर्जरी आवश्यक छे?
1: जी, जन्मजात विकृति में बच्चों को कटे होठ या तालू की समस्या होती है या फिर जबड़े की समस्या होती है, तो इन सब केसेस में ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो किस लिए कि जो अगर कटे होठ या तालू है तो बच्चों को दूध पीने में तकलीफ होती है, जितनी बार बच्चा दूध पीता है वो नाक से निकलने लगता है, समस्या बढ़ जाती है, तो उस केस में आपको बच्चों का इमिजिएटली ऑपरेशन कराना अनिवार्य है।
0: हाँ, मतलब अपन समझा कि जितनी चीज ना अपना शरीर में बनेल छे वो सब एक पैकिंग का तरह रह, अपनो पूरा शरीर एक पैक रह, मतलब
1: जी
0: मुंडा पा,
1: जी
0: पर ओका में यदि कहीं गड़बड़ी आ जाएगा तो दूध बाहर पड़ी जाएगा।
1: जी क्योंकि जब कटे होठ और तालू में अगर कोई छेद रहता है तो जितनी बार भी बच्चा पानी पिए दूध पिए तो वो नाक से निकलता है, तो उस केस में कटे होठ और तालू की सर्जरी होती है। होठ की सर्जरी जो है वो 6 महीने, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब होती है, एंड जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तब हम तालू की सर्जरी करते हैं, साल 2 साल में।
0: बहुत कठिन काम छे, छोटा
1: जी
0: सा बच्चा की
1: जी
0: इतनी सारी
1: जी
0: समस्या ना माता पिता के लेना बड़ी समस्या खड़ी हुई जाए।
1: जी जी
0: पर तंबाकू वो तो व्यक्ति खुद अपना मन से अपनी समस्या खुद खड़ी करी
1: जी
0: रोज,
1: जी
0: ओका
1: जी
0: बारे में आपका ही कहोगा।
1: जी तंबाकू से हमारी लड़ाई तो काफ़ी बड़ी है और आगे मतलब बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि दो चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो तंबाकू की लत उनको लगी हुई है लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं उसके बावजूद नहीं छोड़ पाते, और दूसरे कुछ लोग हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते। दोनों लोगों की समस्याएं फ्यूचर में भविष्य में हमेशा उनका भविष्य खराब ही देखा है मैंने। कभी उनको सबसे ज्यादा समस्या, अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है फाइब्रोसिस की, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब कोई अगर मतलब जवान बच्चे हैं 15-16 साल से तंबाकू खाना चालू करते हैं और वो 21-20 साल के हो जाते हैं तब उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है, उनको मिर्ची लगने लगती है, मिर्ची कम खाने लगते हैं, मुंह की जो चमड़ी है वो कड़क हो जाती है। इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि कैंसर के होने की होने वाली की स्थिति के पहले
0: पहले
1: वाला स्टेज है।
0: पहले
1: पहले,
0: शुरुआत शुरुआत का भी पहला पुण्य कह सकते हैं।
1: हाँ, कैंसर की शुरुआत तो नहीं पर कैंसर की शुरुआत होने का पहले का स्टेज रहता है जिसको बोलते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। उस केस में हल्की सी भी अगर दांत में चोट लग जाए या तंबाकू से जो चमड़ी जो है वो कड़क हो जाए तो उस केस में अपना कैंसर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है दूसरे लोगों के संभावित।
0: तो काई का होगा हमारा किसान भाई बहन ने कहा।
1: तो सबसे पहले तो अपने मन को समझाएं कि हमको छोड़ना है, ये लड़ाई से लड़नी है, क्योंकि मुश्किल बहुत मुश्किल होती है तंबाकू छोड़ना, बीड़ी तंबाकू ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए आजकल च्युइंगम्स आ गई हैं, एक निकोटीन की च्युइंगम्स आती हैं जो कि तंबाकू जैसा ही आपको, जो तंबाकू से बेसिकली लोग क्यों खाते हैं क्योंकि उनको हल्का सा एक नशा जैसा फील होता है और आदत हो जाती है, तो वो च्युइंगम जो है वो आपको थोड़ा सा एक मदद करती है ताकि आप तंबाकू एटलीस्ट छोड़ दो, आप तंबाकू से च्युइंगम पे शिफ्ट हो जाओ। वो च्युइंगम निकोटीन की होती है, हालांकि वो भी नुकसानदायक है पर तंबाकू से बेहतर होती है। एक बार आप वो तंबाकू छूट जाए फिर धीरे धीरे वो च्युइंगम को
0: कभी
1: छोड़ना
0: आखिर में
1: आसान
0: छोड़नो
1: होता है।
0: पड़ेगा।
1: जी
0: एक बहुत समस्या अभी इना समय आई रही ऊंचे अक्कल दाढ़ की,
1: जी
0: लोग समझे कि अक्कल दाढ़ आई जाएगा तो अक्कल आई जाएगा,
1: जी
0: पर
1: इसको
0: कभी समस्या ना ज्यादा आई जाए।
1: जी बेसिकली अक्कल दाढ़ जो होती है उसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वो 20 से 21 साल में निकलती है इंसानों में, तो उससे दिमाग का कोई लेने देना नहीं होता है, वो सिर्फ एक आम बोलचाल में बोलते हैं। बट जब 18 से 20 साल का बच्चा होता है तब वो अक्कल दाढ़ आना को उस वो बाहर निकलने की कोशिश करता, बट अपना जो जबड़ा है उसके वो उसके एक्चुअली अपने 32 दांत होते हैं पर जगह सिर्फ 28 दांतों की होती है। अब जैसे जैसे अपना इवोल्यूशन हो रहा है, अपन प्रोसेस्ड फूड में आ रहे हैं, मतलब पका हुआ खाना खाते हैं, कच्चा खाना अब अपन धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, तो जबड़ों का साइज जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना दांत निकलने हैं, तो उस केस में 50% लोगों में अक्कल दाढ़ की समस्या होती है क्योंकि दाढ़ बाहर निकलना चाहती है पर उसके लिए जगह नहीं होती है, तो या फिर वो आड़ी टेढ़ी निकलती है या किसी दांत के पीछे फंसी हुई रहती है, तो उस केस में अपन को उस अक्कल दाढ़ को सर्जिकली मतलब ऑपरेशन करके निकालना
0: और
1: पड़ेगा।
0: कभी कभी नहीं निकली और अंदर का अंदर सड़ी गई तो फिर
1: तो उस केस में क्या होता है, देखिए अक्कल दाढ़ जो होती है वो अपने अपेंडिक्स जैसा मानते हैं हम उसको, वो किसी काम की नहीं है क्योंकि वो खाने के काम नहीं आ सकती, वो अंदर पड़ी हुई है, वो दिखाने के काम नहीं आती है, लेकिन उसको छेड़ते भी नहीं जब तक कोई तकलीफ ना दे। बहुत लोगों में क्या होता है अक्कल दाढ़ अंदर फंसी रहती है जिंदगी भर, कोई तकलीफ नहीं देती है, लेकिन कुछ लोगों में तकलीफ देती है, तो जैसे ही वो तकलीफ दे सबसे पहले उसको निकलवाएं। जनरली मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, थोड़ी तकलीफ देती है हल्की सी, थोड़ी दिन दवाई गोली खा ली, वो बंद हो गई तकलीफ, फिर उसको भूल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि उस टाइम तो वो ठीक हो गया, लेकिन 6 महीने साल भर बाद फिर वो दर्द होता है, और नेक्स्ट अगली बार का दर्द पिछली बार से ज्यादा होता है। कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, खाना जमा होने लगता है, मवाद इकट्ठा हो जाता है, पस बनने लगता है। इसीलिए अक्कल दाढ़ का सिंपल रूल है कि जब तक वो तकलीफ ना दे उसको ना छेड़े, पर जैसे ही वो पहली बार तकलीफ दे उसी टाइम किसी दंतों के विशेषज्ञ के पास जाएं और उसको इमीडिएटली निकलवाएं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब चलते चलते हम आपसे आखिरी में ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना तरफ से हमारा सब भाई भाई नख का ही एक सलाह दोगे कि वो उनका दांत अच्छा रहे ना, यदि अच्छा नहीं है तो किन स्थिति में उनका सर्जरी की आवश्यकता रहेगा।
1: जी, तो दांत अच्छे रखने का सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, दिन में 2 बार मंजन करना, और सही तरीके से मंजन करना। 2 बार मंजन हम बहुत लोग करते हैं लेकिन उनके भी दांत खराब होते हैं। मंजन करने का तरीका भी सही होना चाहिए। तरीके में क्या है, दांत को घिसना नहीं है। दांत जनरली मैंने देखा है गांव देहात में भी लोग बहुत जोर जोर से घिसते हैं दांत को, उसके कारण भी दांत घिस जाते हैं और ठंडा गर्म लगने लगता है, तकलीफ होती है। तो सबसे पहले तो 2 बार मंजन करें, और हल्के हाथों से मंजन करना है और मसूड़े से दांतों की तरफ, जैसे ऊपर के दांत हैं तो ऊपर जो अपना मंजन है उसको ऊपर रखें मसूड़े पे और दांतों की तरफ लेके आए, नीचे के दांत हैं तो नीचे मसूड़े पे रखें फिर मसूड़े से दांत की तरफ लेके आए। ऐसे हल्के हाथों से दिन में 2 बार आप मंजन करेंगे तो आपको समस्याएं ना के बराबर,
0: एक बार यदि समस्या से बचेगा जी तो सबसे अच्छी बात है।
1: बिल्कुल,
0: नहीं तो फिर समाधान तो आपने बताया सही, इतना सारा सर्जरी तो कराना पड़ेगा आखिरी में।
1: बिल्कुल,
0: तो डॉक्टर संदेश जैन आज आप हमारा बीच में आया, आप जबड़ा रोग विशेषज्ञ छे ना, आपने दांत न जबड़ा न की समस्याओं का समाधान का बारे में हमारा सभी भाई बहनों का इतनी विस्तार से जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: भाई बहनों ने हमारा पास कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का भाव आएगा, हम हमारा किसान भाई बहनों का वो भी बता दियो। आज गेहूं को भाव थो न्यूनतम 2100 से लेना अधिकतम भाव 3905 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकिया, वहाँ जो मॉडल भाव रहे 2430 रुपया प्रति क्विंटल। अपन चना की बात करा तो चना आज 4200 रुपया प्रति क्विंटल से शुरू हुआ था, न वहाँ जो मॉडल भाव थो 6525 रुपया प्रति क्विंटल, न मॉडल भाव 5950 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकिया। मक्का की बात देखा तो मक्का 1716 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से न्यूनतम भाव पर शुरू हुई थी, अधिकतम भाव 2038 रुपया प्रति क्विंटल को रहो, यो जो को मॉडल भाव भी रहो। सोयाबीन की बात करा तो सोयाबीन आज शुरू हुई थी 1050 रुपया सी, न वहाँ जो को अधिकतम भाव रहो 7065 रुपया प्रति क्विंटल को, मॉडल भाव तो 6690 रुपया। चना डॉलर 6000 से शुरू हुआ था न्यूनतम भाव प्रति क्विंटल का हिसाब से, न अधिकतम भाव 8985 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से भी किया, न वहाँ जो मॉडल भाव तो 7000। मूंग की बात करा तो मूंग 3500 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से शुरू हुई थी, न 7900 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव से भी की, वहाँ जो मॉडल भाव तो 4000 रुपया प्रति क्विंटल। एक साथ उड़द को आज एकज भाव थो 2000 रुपया प्रति क्विंटल, वो जो को न्यूनतम थो अधिकतम भाव भी उजरे हो। धनिया की बात 11290 रुपया से शुरू हुई, 11290 रुपया आज पर बंद भी हुई गई। तो यह था हमारा कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। भाई नोनी अभी अपन देख ही रहा है कि इना समय घाम में अच्छी तेजी छे, हालांकि 2-1 दिन से थोड़ा सा मौसम में असर ठंडक आई गई कि हवा आंधी वारगो चलना लगी जाच, पर घाम फिर भी तेज छे न लू को असर अभी भी बनेल छे। तो हमारी बहन ने इना समय बहुत अच्छी घर में ठंडी ठंडी चीज़ ने बनाई ना अपना परिवार का दे रही कि गर्मी को असर कम हो सके, लू को प्रभाव कम हो सके। तो एक में हमारी बहन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ ने बनाई रही कि भाई ठंडो पानी तो सब नखा दे सही समय समय पर कि याद राखी ना पीणूज, क्योंकि अपना बच्चा कभी कभी भूली जाए पानी पीणू भूली जाए, तो बहुत लंबा समय को गैप हुई जाए बीच में पानी पीणू भूलीगा, तो ऐसी स्थिति में पानी को भी उनको याद देवाड़ू। ठंडी चीज ना अपन देखी रहा है कि दही देणू छाछ हो, फिर कैरी को अमलाणु हो, इमली को अमलाणु है, कैरी को पनो हो, ये सब चीज़ ने झोलियो, ये सब चीज़ ना हमारी बहन ने इना समय घर में बनाई रही। अभी कभी अपन देखा है कि कैरी जैसे हवा चला नहीं जरा थोड़ी चली तो पट पट पड़ने लगी जाए ना, बच्चा घर से जाए ना बिनी रहा आवाज होगा, तो कभी कच्ची कैरी खूब सारी आई गई हो तो अच्छो पणों बने ना तैयार करी सकें कि भाई 2-4 अच्छी बड़ा आकार की कैरी ले ली, जी भी पड़ेल हो छोटी मोटी वो भी लई सकें, एकाओका में साथ में चीनी या गुड़ सी ओखा मीठो कर सकें, ओका में हल्को भूनो जीरे पुदीना नाखी देवा, कालो नमक नाखी देवा, सादो नमक नाखी देवा, ये सब चीज़ ने अपन मिलाई देवा तो अपन देखा कि बहुत अच्छी पेय पदार्थ बनी जाए। बनावना को तरीको बड़ो आसान है, जी भी कैरी ने छा धोई ना कूकर में उबाल लो, दो तीन सीटी लई लो, ओका बाद गूदो हाथ से निकाली ना अलग कर दियो, छिलका नख उतारी ना बाहर कर दियो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

खो गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर ख़त्म होते थे और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के ख़राब होने की वजह, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले कागज़ के टुकड़े में जिसे एक नव यौवना भाग कर सीने से लगाती और आंखों से आंसू बहाती। माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियाँ। डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा, बाँच कर सुनाएगा, देख देख चिट्ठी को, कई बार छूकर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे उस चिट्ठी को।

वो जो खत तुमने लिखा था मुझको बसा है दिल में चमन बहार की तरह। खत में मोहब्बत की खुशबू महक रही है चंदन की तरह। तेरे खतों में बसी है ज़िंदगी मेरी, एक एक लफ्ज़ याद है मुझे बचपन की तरह। गीत मोहब्बत के गुनगुनाते हैं सब, पर मेरे लबों पर तेरे खत रहते हैं सरगम की तरह।

संजो के रखा है तेरे उन खतों को जो आज भी तेरी चाहत को बयां करती है। आवाज़ सुनाई नहीं देती तो क्या हुआ, दिल में हलचल तो आज भी मचा देती है।

कागज का टुकड़ा कह लो या लिफाफे में बंद पर्चा हो, संदेशा लिखो संभाल के जज्बात जितना खर्चा हो। वो भी क्या दिन थे चिट्ठियां जब आया करती थी, वो भी क्या दिन थे लिखते लिखते जब स्याही सूखा करती थी, वो भी क्या दिन थे जब इंतजार होता खत्म था, वो भी क्या दिन थे आंखें देख चिट्ठी जब भीग जाया करती थी, पतझड़ में बहार बन आती थी चिट्ठी, सूखे को हरियाली बना देती थी चिट्ठी, डाकिया भी हर घर पहचानता था, चिट्ठी बांटने के बहाने नया रिश्ता बनाता था।

0: लाया ढाकी
1: दूर बसे अपने लोगों की खैर खबर लाती थी चिट्ठी। पोस्टमैन घर घर में जाकर पहुंचाते थे सबकी चिट्ठी।

हर शायरी एक गुमनाम ख़त है किसी न किसी के लिए, जो किसी के घर के पते पर नहीं मन की दहलीज पर खुलती है। हसरतें आज भी ख़त लिखती है, पर मैं अब उन पुराने पते पर नहीं रहता।

श्रोताओं एक सूचना है, इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लीजिए, गुरुवार 4 जून 2026, समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फ़ोन करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को समय सुबह 10:32 से 11:02 के मध्य विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं। जिंदगी तो करवटें लेती रहेंगी, बस खुद को थोड़ा संभलना पड़ेगा, वक्त को भी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, वापस सुकून पाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही

चिट्ठी खो गई है कहीं दुनिया की रफ्तार में, किस हाल में होगी जाने कहाँ अस्तित्व है मझधार में। दे जाती थी जो खबरें सबकी खबर उसकी ना आती है, जो रिश्तों को तराशती थी अब सिसकी भर सुनाती है। कहीं से झांकती होगी कोई आएगा लिखने को, बड़ी बेचैन होगी वो कलम खुद पर चलाने को।

0: अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट हो जाता है। सब कुछ सिमट गया है 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में और इंसान सिमट गए पैसों में। आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, चिट्ठी के द्वारा बताइएगा ज़रूर। इजाज़त दे अर्चना वर्मा को, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही समय में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर

0: और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौधा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्युआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
11: ATF price stabilization fund mein
12: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
11: Because of the stress in the sector wo isse significantly mitigate hoga.
10: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha.
11: Odisha mein coastal highway.
12: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradip, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradip. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four-laning of the road between Khagaria and Purnia.
11: Khagaria se Purnia ke beech mein four-laning.
10: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Ritobroto Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
13: Ritobroto, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Ritobroto claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Ritobroto and Sandipan Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
10: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabanno, approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister Dilip Ghosh announced that a total of around 32 acres across several border districts have already been transferred to the BSF. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parmeshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh, attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning, 21 people, including foreign nationals, lost their lives, while 40 others were rescued. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished and the injured have been shifted to nearby hospitals for medical treatment. 26 people are currently receiving medical treatment. 10 police personnel who rescued several trapped occupants were hospitalized after suffering suffocation during the operation. The Delhi Police has filed an FIR under charges of culpable homicide in the incident. We have a report from our correspondent.
4: The Municipal Corporation of Delhi has also ordered an investigation into the incident. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has said that beginning tomorrow, a high-intensity month-long enforcement and prevention drive will be launched under the joint leadership of District Magistrate, Deputy Commissioner of Police and Deputy Commissioners of MCD to conduct rigorous fire compliance inspections, audits and sealing of identified non-compliant establishments including hotels, guest houses, nursing homes, coaching centers and other vulnerable premises. Anpamish, Akashwani News, Delhi.
10: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended condolences over the loss of lives due to the tragic fire incident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class.
14: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and a stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashvani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
15: My name is Abhishek Kumar. I had applied under the Pradhan Mantri Awas Yojana 2 years ago. After submitting my application, I was allotted a house through a lottery draw. Following the allotment, I have been paying the required installments. Once all the installments are paid, the property registration will be completed in the coming months. After that, I will receive possession of the house. This is a very good scheme as it is helping poor people get access to housing.
14: Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has enabled 43.52 crore health cards, expanding access to health care protection. While Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana scheme is providing quality generic medicines at 50-80% lower prices through Jan Aushadhi Kendras. Talking to Akashvani News, Brahmdev of Bihar said that the medicines at these Kendras are available at very affordable price than the market.
16: My name is Brahmadev Malhaka. I am from Muzaffarnagar district in Bihar. I have been purchasing medicines from here for about a year. The medicines are available at affordable prices. The doctor advised us to buy medicines from Jan Aushadhi and we follow that advice and regularly purchase our medicines from here. If we want to buy the same medicines from outside, they are much more expensive. This government initiative helps solve the problems of the poor people.
14: The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has also evolved into a powerful instrument of empowerment. Under the scheme, 40 lakh crore rupees of loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the Citi 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Inter-Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Gadde defeated Chinese Taipei Xiang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
17: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर. रात्रि के 9:15 हुए हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत. चित्रगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है. आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म दो चोर का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने. इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आर डी बर्मन का है.

आइए अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। इस गीत को लिखा इंदीवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

श्रोताओं, एक सूचना है। इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार 4 जून 2026 को समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। फ़ोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को समय सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब रुख करते हैं कार्यक्रम की ओर। चित्रगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा फिल्म फिर रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने, संगीत OP नैयर का है।

0: और इसी गीत के साथ चित्रगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: चर्चा का विषय है, ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मेज फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
2: जी डॉक्टर डबास, चूंकि

0: जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट है, जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकौड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत

0: मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण किया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर जो मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम इसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं। उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए, और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और दूर तक के पानी की पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात की मध्य भाग की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए

0: यूज कर रही है
1: जी
0: और किसी किसी वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती
1: बिल्कुल
0: है,
1: दबाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशंस होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें एक तरह जनरली हम बात करें इसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशंस यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

0: जिससे कि उनको फायदा होता है, तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है। उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार अभी हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय को होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब फसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक पार्श आदमी वार आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के नेतार लगातार संपर्क में बने रहे और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितने अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबाल साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है। उस सपने वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार

0: लगती है। तो जब भी कृषि का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसके और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप ही आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो उस सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया। अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी।
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ, बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय, श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं नाटक खामोश सच। प्रतिभागी कलाकार है MM कपूर, अंजुश्री मुखर्जी, तपन मुखर्जी, चमन दलाल, अलका पुनेरेकर, दिलीप लोकरे, उमेश कुलकर्णी और उदित नारायण। प्रस्तुति राकेश जोशी की है।

0: हाय हाय डॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई?
1: हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तुम भी इस पार्टी में खा पी रही हो।
1: हाँ?
0: लेकिन डॉक्टर रमन से तुम्हारी मुलाकात कब हो गई?
1: मुलाकात हुई नहीं, अभी होगी।
0: मुलाकात होगी? यानी कि
1: फिलहाल तो हम यहाँ इला की दोस्त की हैसियत से आए हैं।
2: अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर इला की दोस्त हैं? लेकिन डॉली जी, डॉक्टर रमन से जरूर मिलना।
1: क्यों भाई?
2: बहुत जिंदा दिल आदमी है हमारी तरह।
1: क्या कहा, जिंदा दिल और वो भी आपकी तरह? भला कैसे माने हम, आज तक आपने हमें न तो कभी चाय पर बुलाया और न ही कभी पार्टी दी।
2: अरे भाई देखिए, हमारा तो वही हाल है, घर आओगे तो क्या लाओगे और अपने घर बुलाओगे तो क्या खिलाओगे। लेकिन डॉली, डॉक्टर इला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही।
1: वो रही उस तरफ। इला इला सुनो, ये मिलना जी आई। हाँ इधर आओ, ये मिलना चाहते हैं आपसे।
0: अरे डॉक्टर इला, कहाँ थी आप? हम लोग इतनी देर से आए हुए हैं, न तो आप दिखाई दे रही हैं और न डॉक्टर रमन। आखिर सालगिरह की बधाई हम लोग ये तो किसको दें?
1: अरे हाँ इला, डॉक्टर रमन खुद कहाँ गायब है, और तुम भी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी रमन को फोन करने गई थी। आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ, वो हॉस्पिटल से चल चुके हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं।
3: अच्छा अच्छा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप दोनों की शादी वादी कब हो रही है?
1: अब ये तो समय ही बताएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।
3: नहीं भाई नहीं, हमसे इतनी अच्छी पार्टियों का इंतजार नहीं होता, अब बस फटाफट कर डालिए शादी।
1: लीजिए रमन आ गए।
2: हाय डॉक्टर।
4: हेलो डॉक्टर।
2: हेलो,
5: गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
6: गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग। लेकिन हद करते हो यार, पार्टी शुरू हुए एक घंटा हो चुका है और तुम हो कि अभी तक?
5: क्या करें यार, एक इमरजेंसी केस आ गया था, उसे देखकर सीधा चला रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, और अब सबसे पहले हमारी ओर से वर्षगांठ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए।
5: शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
2: ये फूल भी,
5: अरे वाह बड़े सुंदर फूल हैं।
3: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
5: थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
1: रमन, तुमसे मैंने अपनी सहेली डॉली के बारे में बात की थी ना।

0: वही वो तुम्हारी बचपन की दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हैं डॉली। इला से बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, लेकिन मुलाकात आज ही हुई।
1: तारीफ तो हमने भी बहुत सुनी है आपकी।
0: किससे?
2: अच्छा जी, तो ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी। सुनो रमन, तुम अकेले आए हो? वो जैक कहाँ है?
0: अरे यार, चार बार फोन किया था उसको, लेकिन हर बार एक ही आवाज और एक ही जवाब, साफ घर पर नहीं है।
2: लेकिन उसे मालूम तो है कि आप
0: पार्टी हैं। हाँ, सब मालूम है उसको, पिछली बार ही सब कुछ बता दिया था।
1: कौन कौन कौन जैक?
0: अरे वही सुधांश। हाँ, सुधांश बनर्जी। आप तो अच्छी तरह जानती होंगी उसको।
1: ओ गॉड, वो सुधांशु? क्यों, क्या हुआ? उसका नाम सुनकर घबरा क्यों गए आप?
3: अरे क्या बताऊं इलाजी, एक बार मैंने उससे लिफ्ट मांगी थी।
1: अच्छा?
3: असल में देर हो गई थी ऑफिस को, बस इतना सुनना था कि उसने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई, इतनी तेज चलाई कि बस जैसे हवा में उड़ रहा हो। 3 दिन तक नींद नहीं आई मुझे।
0: आइए आइए आइए, श्रीमान सुधांशु बनर्जी उर्फ जैक साहब, अरे आपका ही इंतजार हो रहा था।
4: सुधांशु, तुम प्यारे खूसट और फिलहाल बुढ़े होकर ही मरोगे।
5: अरे यार, जन्मदिन तो डॉक्टर का है और इतनी सारी शुभकामनाएं तुम हमें दे रहे हो, क्या बात है, ऐसा क्या किया है हमने?
6: देख सुधांशु, बात यह है कि तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी कि बस तुम आ गए, यानी कि 100 साल की उम्र तो तुम्हारी पक्की है और बाकी अल्लाह जाने।
5: मरना और वो भी बुढ़ा होकर, हम उनमें से नहीं है। अच्छा? जिन्हें बुढ़ापा आए, सदा बहार जवानी वाले लोग हैं हम। और अगर थोड़ा बहुत बुढ़ापा आ भी गया तो ये डॉक्टर किस मर्ज की दवा है।
2: और तुम्हारी तरह जवान दिल कभी बूढ़े हुए हैं?
5: बिल्कुल ठीक, हम तो जवान ही पैदा हुए थे और जवान ही मरेंगे। हाँ, तो डॉक्टर रमन, आप हमारी ओर से वर्षगांठ की बधाइयां स्वीकार कीजिए।
0: बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। पर यार, हमें ये बताओ इतनी देर कैसे हो गई?
5: अब क्या बताऊं यार, कल बिजनेस के सिलसिले में नागपुर जाना पड़ गया था और वहाँ से सीधे घर और घर से यहाँ।
2: लेकिन जय, आज तुम्हारे वो खटारे की आवाज नहीं सुनाई दी, वरना तुम्हारे आने की खबर उसकी आवाज से मालूम हो जाती है।
5: अच्छा जी, तो हमारी 22,000 की नई मोटरसाइकिल की ये औकात? अरे इला जी, वो तो उड़न खटोला है, उड़न खटोला। अब तुम दोनों कर डालो शादी।
0: नहीं यार, अभी नहीं करेंगे।
5: देखिए श्रीमान, इतनी बात तो बिल्कुल साफ है कि आप दोनों को शादी करनी ही है, लेकिन कब? और इस कब के चक्कर में हमारी पार्टी को बेवजह देर हो रही है।
2: तुमने अभी ये पार्टी तो खाई नहीं और अगली पार्टी की बातें कर रहे हो।
5: क्या बचा है पार्टी में? अब आपके घर में घुस ही आए हैं तो खा पी कर ही जाएंगे।
4: और आजकल तो वैसे भी एडवांस बुकिंग का टाइम चल रहा है।
5: डॉक्टर, आज तुम्हारी पार्टी में मजा आ गया यार। हमें ये तो बताओ तुम कि ये बर्थडे साल में एक ही बार क्यों मनाते हो?
1: अब चले यार, बहुत देर हो गई है और फिर टैक्सी मिलने में परेशानी होगी।
5: बाय द वे, आपको कहाँ जाना है?
1: गोल मार्केट तक।
5: मुझे एयरपोर्ट कॉलोनी जाना है, वही जो गोल मार्केट के आगे है, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा।
1: ये नहीं नहीं डॉली, इसके साथ बिल्कुल नहीं, और वो भी इस वक्त।
5: देखिए देखिए इलाजी, हम इतने वो भी नहीं कि।
2: अच्छा बाबा, ठीक है।
6: अच्छा डॉक्टर रमन, अब हमें भी इजाजत दे, बहुत देर हो गई।
0: ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक्स, थैंक्स लॉट फॉर द कमिंग।
5: ओके
3: इला, हम लोग भी जा रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा, फिर जरूर आइएगा।
3: ओके गुड नाइट।
0: ओके गुड नाइट।
3: हां अच्छा इला, गुड नाइट।
2: ओके गुड नाइट,
3: बाय बाय।
0: अरे सुनो जय, हां कल जरा टाइम से आ जाना।
7: हां हां जरूर आऊंगा। ओके
0: बाय
7: बाय।
2: चलो, पार्टी तो अच्छी तरह निपट गई।
0: हाँ, ये

0: बात तो है, बहुत अच्छा इंतजाम किया था आपने हमारी पार्टी का।
1: ये आप क्या लगा रखा है?
0: अरे भाई, हॉस्पिटल की आदत जो पड़ी है।
1: नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में भी हमें आप कहकर ही बुलाया जाए। और जो अपनापन तुम में है वो आप में कहाँ?
0: हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, ये तो बताओ कि कल हॉस्पिटल कब चलना है?
1: वही रोजाना के समय।
0: हाँ, वैसे कल कोई ऑपरेशन भी नहीं है। करीबन 9 बजे आ जाऊंगा। तुम तैयार है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
1: ओके।
0: ठीक है, गुड नाइट।
1: गुड नाइट।

0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, आइए बैठिए।
0: डॉक्टर साहब, ये यहाँ छाती में बहुत दर्द है, रह रहकर टीस उठती
1: कहाँ
0: है।
1: पर? ये
0: हाँ,
1: यहाँ
0: बस यही डॉक्टर,
1: ये कब से दर्द है?
0: ये कोई 4-5 महीने से है डॉक्टर।
1: और आज आप यहाँ आ रहे हैं? पहले नहीं आ सकते थे?
0: नहीं, पहले भी डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों को दिखाया था मैंने, लेकिन कोई आराम नहीं आया। फिर आपके पास
1: अच्छा, ठीक है। कोई एक्सरे वगैरह, कोई टेस्ट वगैरह करवाया है?
0: जी जी हाँ, ये रहा,
1: लाइए, रिपोर्ट दीजिए मुझे। और वो एक्सरे
0: ये रहा डॉक्टर।
1: वो दीजिए, बायोप्सी रिपोर्ट। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको मैं बुला लूँगा, आप बाहर बैठिए।
0: जी क्या बात है रमन?
1: देखो हिला, ये एक्सरे रिपोर्ट
0: हाँ
1: और ये रिपोर्ट भी देखो।
0: हाँ
1: इस आदमी को कैंसर है और
0: अच्छा,
1: वो भी लास्ट स्टेज पर, और कहता है कि मेरा इलाज कीजिए।
0: तो क्या हुआ? करो इसका इलाज।
1: नहीं, मैं केस को हाथ में नहीं लूंगा। और तुम्हें तो मालूम है हिला कि ऐसे केस में मैं हाथ नहीं डालता जिनमें कुछ आशा ना बची हो।
0: लेकिन बीमारी को कम तो किया जा सकता है, और अगर मान भी लिया जाए कि आदमी नहीं बचेगा, तो भी इसका मतलब ये तो नहीं कि मरीज को दवा ही ना दीजिए।
1: देखो इला, दवा देने को दूसरे डॉक्टर शहर में बहुत मौजूद हैं,
0: तुम क्यों नहीं?
1: क्योंकि इससे मेरी रेपुटेशन में फर्क पड़ता है।
0: रेपुटेशन रेपुटेशन, मुझे चिढ़ है तुम्हारी इस बात से।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर साहब?
3: क्या बात है यार, क्या कोई खास बात? अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर बाद
1: नहीं
3: आता
1: नहीं नहीं नहीं
3: हूं।
1: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे यार, आओ इधर बैठो।
3: लेकिन कोई बात है तो जरूर।
0: देखो जैक, एक मरीज अपने जीवन के अंतिम समय में इनके पास आता है अपने इलाज के लिए। क्योंकि इनके अनुसार उसका मरना निश्चित है, इसलिए रमन उसका इलाज करना नहीं चाहते।
2: मरना निश्चित है? अरे भाई, मरना तो सभी का निश्चित है, सभी को मरना है एक ना एक दिन।
1: असल में इस मरीज को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है।
3: तो क्या हुआ, तुम्हें तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए।
0: यही तो मैं कहती हूं, डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए।
1: लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं।
0: मैं लेती हूं रिस्क, मेरी जिम्मेदारी पर आप उस मरीज का ऑपरेशन करेंगे।
1: ठीक है, मैं ऑपरेशन करूंगा, लेकिन एक शर्त पर।
3: शर्त?
1: हाँ।
3: अच्छा कहो।
1: मरीज को सारी स्थिति साफ साफ बतानी होगी।
0: नहीं, हरगिज नहीं। तुम चाहते हो कि वो आदमी ऑपरेशन से पहले ही मर जाए?
1: मैं मरीज को धोखे में नहीं रख सकता।
2: थाल में गए तुम्हारे ये आदर्श, ये नियम। एक मरीज मौत के करीब है और तुम उसे सहारा देने की बजाय अपने आदर्श और नियमों की लकीर पीट रहे हो।
0: देखो देखो रमन, तुम इस शहर के सबसे अच्छे सर्जन माने जाते हो, दूर दूर के लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आने से

0: करते हैं सिर्फ सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा ना कह दो।
1: लेकिन मरीज को धोखे में रखना एक पाप है डॉक्टर के लिए।
2: कुछ नहीं है पाप। कोई मरीज तुम्हारे पास जीवन की आशा लेकर आता है और जब तुम उससे कहते हो कि बहुत देर से आए तो मालूम है मरीज वहीं मर जाता है और बची रहती है केवल उसकी जिंदा लाश।
0: देखो रमन, ये ऑपरेशन जरूर करो और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए
1: देखो
0: तो
1: देखो इला, झूठी आशा दिलाने से कोई फायदा नहीं।
0: ठीक है, अगर तुम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हो तो ये ऑपरेशन मैं करूंगी।
1: इला,
3: ये हुई ना कुछ बात। हाँ, हो जाए इसी बात पर एक फर्स्ट क्लास कॉफी।
0: अच्छा, लेकिन कॉफी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है।
3: अरे कौन बेवकूफ यहाँ कॉफी पीने को कहता है, और यहाँ तो मुझे पानी से भी स्प्रिट की बू आती है। चलिए आज हम आपको किसी बढ़िया रेस्तरां में कॉफी पिलाएंगे।
0: ठीक है, आप लोग कॉफी पीकर आइए।
3: और आप?
0: नहीं, हम नहीं आएंगे, बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं।
1: सचमुच आज मरीजों की लंबी लाइन लगी है, फिर कभी।
3: ठीक है, आप जानिए,
0: ये कॉफी तुम पर उधार रही।
3: बिल्कुल पक्का रहा?
0: बिल्कुल पक्का।
3: हम संडे इवनिंग ठीक 6 बजे रेस्तरां पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल।
3: अच्छा डॉक्टर, हम चलते हैं। हाँ,
1: पर इस समय तुम जाओगे कहाँ?
3: वही मुल्ला की दौड़, मस्जिद तक।

0: माय गॉड
1: कितनी गर्मी है आज। जैक आओ उस तरफ बैठेंगे, उधर कूलर के पास।
2: हाँ हाँ चलो आओ, उधर ही बैठेंगे।
1: यहाँ सचमुच ठंडक है यार।
2: हाँ भाई यहाँ कुछ ठंड क्या है। हाँ अच्छा आप ये बताइए कि इला जी क्यों नहीं आई?
1: अरे आते वक्त इला का मूड कुछ ठीक नहीं था।
2: मूड ठीक नहीं था? क्यों, कोई खास बात?
1: वही हुआ जिसका डर था। उस कैंसर वाले मरीज का ऑपरेशन इला ने बड़ी मेहनत से किया। जितना किया जा सकता था सभी कुछ उसने किया, लेकिन लेकिन वो बच नहीं पाया।
2: खैर अपनी ओर से पूरी कोशिश करना डॉक्टर का काम है, फिर चाहे मरीज बचे या ना बचे। और फिर ये रिस्क शब्द भी तो ऐसी ही परिस्थितियों के लिए बना होगा है।
1: देखो जैक, ये रिस्क शब्द विश्वास की कमी को दिखाता है, और इसलिए मैं कभी रिस्क नहीं लेता।
2: अरे यार डॉक्टर तुम तो फिर संजीदा हो गए। अच्छा आप ये बताइए कैसी छन रही है?
1: हमारा क्या है यार, सब ठीक ही है। वैसे भी मरीजों से फुर्सत कहां मिल पाती है। तुम सुनाओ, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है?
2: हाँ ठीक ठाक।
1: अच्छा ये बताओ कॉफी के साथ कुछ लोगे?
2: हाँ
1: अरे मैं पूछ रहा हूँ कॉफी के साथ कुछ लोगे? जैक क्या है यार, क्या देख रहे हो उस तरफ?
2: अरे यार डॉक्टर जरा उधर तो देखो।
1: अरे क्या है उस तरफ?
2: अरे जरा देखो तो सही, लड़कियों की गैंग हाय।
1: हे भगवान, फिर तुमने यहाँ का गड़बड़ शुरू कर दी
2: है?
1: अरे कम से कम मेरी इज्जत का मेरा तो ख्याल किया होता।
2: अरे तुम भी यार डॉक्टर रहोगे वहीं के वहीं।
1: लेकिन
2: अच्छा यार नहीं देखता बस।
3: अरे हाय जैक, तुम?
2: अरे निशा तुम ये खाने? आपसे मिलिए, आप हैं डॉक्टर रमन, शहर के मशहूर डॉक्टर।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मशहूर नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि हम बदनाम ही हैं।
2: छोड़िए साहब, और ये हैं मिस निशा गांगुली।
1: अच्छा अच्छा तो आप हैं निशा? क्यों जैक, ये वही निशा है ना जो तुम?
2: बस बस बस बस ठीक पहचाना आपने, ये वही है।
1: हाँ तो निशा जी ये बताइए कि आप कॉफी पीना पसंद करेंगी या कुछ ठंडा वगैरह?
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, फिलहाल तो कुछ भी नहीं।
2: तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं तुम्हें कुछ खाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा, शायद इसीलिए तुम मना कर रही हो। और घबराओ नहीं, बिल मैं ही दूंगा।
3: ये बात नहीं है, दरअसल

0: अपने दोस्तों के संग यहाँ डिनर पर हूँ।
1: अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा।
0: अच्छा तो मैं चलती हूँ। और हाँ, कल शाम 7 बजे तुम मेरे घर पहुँच रहे हो।
1: किस खुशी में मैं आपके घर पहुँच रहा हूँ। और हाँ, ये आपकी सहेलियों की फौज वहाँ होगी या नहीं?
0: ओ जैक।
1: अच्छा बाबा, पहुँच जाऊंगा तुम्हारे घर पर।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा? आप भी कभी आइए घर।
1: हाँ, बस, बस, बस बस बस बस बहुत हो चुकी फॉर्मेलिटी, तुम्हारी फौज मिस कर रही होगी तुम्हें।

0: मैडम मैडम वो आपसे मिलने आते हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है।
1: कौन?
0: अरे वो लंबे से जो थोड़ा सा
1: एक्सीडेंट,
0: मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप जल्दी चलिए प्लीज।
1: अच्छा अच्छा चलो।
0: ये देखिए डॉक्टर। ओह नो जैक। नर्स इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो और ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करो। और हाँ इनका ब्लड ग्रुप भी जल्दी, मैं डॉक्टर रमन को फोन करती हूँ। हेलो हेलो रमन, हाँ हाँ मैं इला बोल रही हूँ। सुनो रमन तुम फौरन हॉस्पिटल चले हो।
2: हाँ हाँ जैक कोई, रमन सुनो जैक सीरियस है, ऑपरेशन करना होगा, जल्द चले आओ। हाँ

0: नर्स,
1: कहाँ है पेशेंट?
2: उधर इमरजेंसी में सर।
1: इला, क्या रिपोर्ट?
2: खून बहुत बह चुका है। रमन तुम ही देखो।
1: इला, इसके चेस्ट का पूरा एक्सरे ले लो, फौरन एक्सरे लो। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है?
2: ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और ये रहा एक्सरे, मैंने पहले ही 3-4 एक्सरे ले लिए।
1: गुड, वेरी गुड, ये तुमने अच्छा किया। तुम आओ मेरे साथ। नहीं नहीं रहा।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: ये देखो हाँ। इस बोन को देखो।
2: तो क्या हुआ?
1: इला, जैक नहीं बचेगा।
2: रमन, कैसी बातें कर रहे हो? फिर वही ना समझी।
1: मैं नम समझी की बातें नहीं कर रहा हूं। ये देखो, क्या ऑपरेशन करना बेकार?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेशन भी जरूर होगा और ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना होगा।
1: कौन कहता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता? लेकिन लीला, ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। देखो, तुम समझती क्यों नहीं?
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मरीज को होश आ रहा है।
1: ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूं।
2: लो, आ रहा है उसे होश। कह दीजिए उससे भी कि तुम भी मरने वाले हो, तुम्हारा भी खेल खत्म है जैक।
1: तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वही कह रहा हूं जो सच है।
2: कुछ भी सच नहीं है। उसकी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे स्थिति कुछ भी हो।
1: बोलो जैक। कहो जैक।
3: रमन।
1: बोलो।
3: रमन, ये क्या हो गया?
1: अरे तुम फिक्र मत करो यार।
3: क्या होगा रमन?
1: तुम शांत रहो मेरे यार।
3: रमन, नहीं, तुम तो सब जानते हो ना।
1: देखो जैक, तुम्हारे लिए बोलना ठीक नहीं, प्लीज।

0: प्लीज शांत रहो।
1: मुझे बताओ, तुम बताओ रमन,
0: देखो
1: तुम्हें सही
0: तुम बस चुप
1: बात
0: रहो,
1: बतानी होगी डॉक्टर।
0: देखो तुम सिर्फ खामोश रहो, इलाज तुम्हारे ऑपरेशन के लिए तैयारी करने गई है।
1: क्या तुम नहीं, तुम नहीं करोगे मेरा ऑपरेशन?
0: ये बात नहीं है जायद।
1: देखो देखो डॉक्टर, तुम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हो।
0: हाँ हाँ मैं ही करूंगा तुम्हारा ऑपरेशन। नर्स नर्स, इसे ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो, मैं तैयार होकर आता हूं।
2: रमन, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूं, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे?
0: नहीं नहीं ला, जैक चाहता है कि उसका ऑपरेशन मैं करूं।
2: ये तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन तुम तो
0: नहीं। इला नहीं, आज जैक का ऑपरेशन मुझे ही करना होगा।
2: पर तुम तो मना कर रहे थे ना।
0: इला इला, आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मौत कितनी बदसूरत होती है। जैक के सामने आज सब कुछ जानते हुए मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं बोल पाया।
2: रमन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
0: हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर जैक के पास भी ज्यादा वक्त कहाँ है।

0: लो, ऑपरेशन तो हो गया। क्या तुम्हारी राय में हम सक्सेसफुल हैं?
1: अभी भी वही राय है मेरी ला। ऑपरेशन के बाद होश आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और होश आने की बहुत कम संभावना है।
0: तुम रमन बहुत निराशावादी हो।
1: मैं अब और बहस में नहीं पड़ना चाहता।
0: पर तुम जा कहां रहे हो?
1: मैं जैक को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं।

0: 3 बज गए, लेकिन अभी तक फोन क्यों नहीं आया? पता नहीं जैक कैसा होगा, पर मैं फोन का इंतजार क्यों कर रहा हूं? मुझे तो मालूम है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, जैको कुछ नहीं होगा। पता नहीं ये लोग मुझे फोन क्यों नहीं करते, सब के सब लापरवाह। ठीक है, मुझे फोन करना चाहिए, मैं ही फोन करूंगा, लेकिन
1: मरना और वो भी बूढ़ा होकर, हम उनमें से नहीं है जिन्हें बुढ़ापा आए, सदा बहार जवानी वाले लोग हैं हम।
2: तुम चाहते हो कि वो आदमी ऑपरेशन से पहले ही मर जाए?
3: मैं मरीज को नहीं कहता, मेरे कुछ आदर्श कुछ नियम
1: हार के गए तुम्हारी ये आदर्श ये नियम।
0: नहीं नहीं जैक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैक तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टर तो एक इंसान होता है ना। हाँ, मैं पहले इंसान हूं फिर डॉक्टर। हेलो, हाँ इलाका हो?
4: जैक को होश आ गया।
0: क्या कहा? जैक को होश आ गया।

मेरे जय को होश आ गया, मेरे जय को होश आ गया। ओ ओ जैक, ओ मेरे जैक, थैंक गॉड।

अभी आप सुन रहे थे नाटक खामोश सच। प्रतिभागी कलाकार थे MM कपूर, अनुश्री, अंजुश्री मुखर्जी, तपन मुखर्जी, चमन दलाल, अलका पूर्णिया, दिलीप लोकरे, उमेश कुलकर्णी और उदित नारायण। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए अभिषेक व्यास और साथी का गिटार पर बजाया राग पुरिया।

शास्त्रीय संगीत में अभी अभिषेक व्यास का गिटार पर बजाया राग पुरिया हमने सुना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विक

शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।